नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 8:57 में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

साथियों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और फिर शाम 6:30 बजे 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान का समय रहेगा 9:10 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन पाएंगे 9:20 पर। 9:40 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गज़लें।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम युववाणी में आप सुनेंगे आपकी पसंद शाम 5 बजे, और 5:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार नागौर में फिल्म संगीत पर आधारित विषय मुंदियाड़ का गणेश मंदिर के बारे में।

0: दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6 बजे और रात्रि 8:45 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:05 पर और 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। साथियों रात्रि 9:25 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के विशेष और शेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9 बजे है आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7,744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र 13 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकनों की जांच 14 अक्टूबर को होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और हनुमानगढ़ जिला परिषदें शामिल हैं। राज्य में पात्र और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से शेष रह गए पात्र नागरिकों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 7 दिनों में 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्री महाजन ने पात्र नागरिकों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा अन्य पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का आयोजन आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। सुरक्षित डिजिटल तंत्र विकसित करने के साथ वैश्विक सहयोग, निवेश और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान पर भी विचार किया जाएगा। यह आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। सेवा सेतु अभियान 2026 के तहत बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा कराने पर करदाताओं को छूट दी जाएगी। कल से शुरू हुए अभियान के तहत आयोजित शिविरों में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% और शास्ती में पूरी छूट मिलेगी। ये छूट आवासीय और व्यावसायिक भवनों तथा भूखंडों के बकाया गृहकर पर लागू होगी। वहीं वर्ष 2025-2026 तक बकाया नगरीय विकास कर पर ब्याज और शास्ती पूरी तरह माफ की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण में अभियान के तहत जोनवार विशेष सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जेडीए के उपायुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 16 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराना है।
2: सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति जो पट्टा लेने के लिए पात्र है उसको पट्टा दिया जाए, मौके पर ही उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। और ये 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का ये कैंप है। इसमें समस्त प्रकार की जो सेवाएं, जैसे मान लीजिए लीज होल्ड से फ्री होल्ड है या नाम ट्रांसफर है या अन्य प्रकार की जो भी वो सर्विस लेना चाह रहा है, तो उसमें सभी में अलग अलग प्रकार की छूट दी हुई है। जो 10 जून का एक सर्कुलर सरकार का निकला था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और कैंप में आने वाले व्यक्ति के लिए 2-3 चीजों की सहूलियत है कि उसको कैंप में आने के बाद लगातार उसका फाइल का मूवमेंट उसको पता रहता है। कोशिश यही रहती है कि जो सुबह आ रहा है तो दोपहर तक या शाम तक वो अपना पट्टा लेके जाए।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया और देश की संप्रभुता की रक्षा करने की सेना की क्षमता और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर एयरबेस पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शन वायुसेना के मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत होगा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की किरण हॉक विमान, सारंग टीम के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तेजस हवाई करतब दिखाएंगे। तेजस के कोबरा मैनुअर सहित अलग अलग हवाई करतब दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। गौरतलब है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 12 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक स्मारकों पर सैलानियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जंतर मंतर के अधीक्षक प्रतिभा यादव ने बताया कि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं।
3: अभी पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और अभी 4 दिन की छुट्टी लगाता है। उस दौरान तो 8,000 टूरिस्ट पर डे आए हैं हमारे पास और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए हमने प्रॉपर तैयारियां कर रखी हैं। हमारी तैयारियां पूरी कंप्लीट हैं। टूरिस्ट आए यहां पे और बिल्कुल कंफर्टेबली उसकी यात्रा रहे, वो आराम से भ्रमण करे, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारी पूरी टीम इसके लिए तैनात है।
1: प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 7,744 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक ही दिन में प्रदेश भर में 17,000 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में करीब 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,961 टीमें शामिल रहीं। गिरफ्तार लोगों में 55 इनामी अपराधी, 354 हिस्ट्री शीटर और अन्य अपराधी तथा 922 वारंटी और फरार आरोपी शामिल है। अभियान के दौरान 787 नए मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2026-2027 के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई है। योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए आज लोक सूचना जारी। 17 जिला परिषदों और संबंधित पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस पर आज जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। और प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 7744 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं, सुबह के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

साथियों, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। सुबह के 9:20 में प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पोडवाल को।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पोडवाल को। ये आकाशवाणी नागौर पाचीरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में गैर फिल्मी गज़लें।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम सुगम संगीत में गैर फिल्मी गजलें, जिसमें आपने सुना अनूप जलोटा, भूपेंद्र सिंह और मिताली राज को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। शुरुआत करते हैं फिल्म तेरे नाम से। आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की है, संगीत हिमेश रेशमिया का और गीत लिखा है समीर ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म तेरी मेहरबानियों से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है SHVRE ने।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साबिर कुमार की आवाज़ में फिल्म प्यार झुकता नहीं है से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है SH बिहारी ने।

साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन से। आवाज SP बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू और पंकज की है। संगीत नदीम सरवण का और गीत लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुना रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म साजन का घर से। संगीत नदीम सरवन का, गीत लिखा है समीर ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए, तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी से। आवाज़ हनी सिंह और सिमर कौर की है, गीत और संगीत हनी सिंह का।

0: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
0: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पद्मावत से। आवाज श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की है, संगीत संजय लीला बंसाली का, और गीत लिखा है AM तुर्राज और स्वरूप खान राजस्थानी ने।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म दबंग से। संगीत साजिद वाजिद का और गीत लिखा है फैज़ अनवर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। संगीत विक्की प्रसाद का है और गीत लिखा है गरिमा वहल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। संगीत हिमेश रेशमिया का और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने। आवाज़ पलक मुछल और साथियों की है।

0: साथियों, कार्यक्रम का अंतिम गाना आपने सुना अभिजीत सावंत और अंतरा मित्रा की आवाज़ में फिल्म डिशुम से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं। अब आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

आनंद बख्शी की लिखी ये कवाली आप सुन रहे थे गुलाम मुस्तफा फिल्म से, इकबाल साबरी और अफजल साबरी के साथ साथियों की आवाजें थी।

0: पंकज उधास को अभी आपने सुना, तर्ज थी पंकज उधास की।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: आई लव फाल्गुनी इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। फाल्गुनी पाठक की आवाज थी, महबूब के बोल ललित का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शमीम जयपुरी की ये रचना आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में। ये थी पूर्वी दादरा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: फिल्म निकाह की ये गजल आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में, हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: अमजद नदीम की तर्ज थी, शब्बीर अहमद का लिखा ये गीत आपने सुना, लिखा भारद्वाज।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401068। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

पहली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।

फिल्म लम्हे में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। श्रोताओ, रंग तरंग ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
2: की महफिल, श्रोताओ, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं उन पर ही फिल्माया गया ये गीत।

0: फिल्म वनवास से ये रामधुन आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाजों में, विजय प्रकाश और महालक्ष्मी अय्यर की भी साथ में आवाजें आपने सुनी। सईद कादरी के बोल थे, मिथुन की तर्ज थी। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। अपनी सहज और बेबाक अदायगी से उन्होंने हम सभी का दिल जीता। हिंदी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय कलाकार रहे नाना पाटेकर के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक पार्थो घोष, जिन्होंने फिल्म 100 डेज, अग्निसाक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर के लिए।
1: नाना पाटेकर के साथ कैसा आपका संबंध रहा?
2: नाना के साथ हमारे बहुत ही अपने तरीके से एक दोस्ती हो गए।
1: नहीं, कहते हैं कि उनको समझना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है।
2: नहीं, वो क्या है, वो एक बार उसको जब दोस्ती हो जाते फिर उसको साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। फिर वो कोई चीज में कुछ बात ही नहीं करता और उसको एक बार विश्वास हो जाते हैं।
1: हाँ।
2: जो सामने वाले वो अपने काम जानते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: तो फिर वो कभी भी डिस्टर्ब करते नहीं और उसको साथ ऐसे दोस्ती हो गया था, मतलब वो सारा दिन में तो 10 बार फोन और खाना कुछ बनाया, खुद का खाना बनाने का बहुत
1: अच्छा,
2: शौकीन
1: अच्छा।
2: था, मैं खाना खाने का शौकीन था।
1: हाँ।
2: तो खाना बनाए तो पार्थ तू आ जा, तू कहां बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे लिए मैं ये बना रहा हूँ। और उसको मुझे खिला के उसका बहुत खुशी होता।
1: अच्छा, संतुष्टि मिलती
2: है। बोलते तू खाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खाता है। वो खाने अच्छे बनाते हैं यार, वो बहुत मेहनत करके बनाता था।
1: अच्छा
2: है, बहुत दिल से, मतलब
1: जितनी मेहनत वो फिल्मों में करते हैं
2: वो बहुत मेहनत करते हैं।
1: अच्छा।
2: वो मतलब सचमुच वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है।
1: हाँ।
2: ये तो उसने दिखाई दिया,
1: बिल्कुल थिएटर से आए हैं,
2: थिएटर से
1: मेहनत की
2: और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। उसका जिंदगी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: कुछ नहीं चाहिए उसको, अगर बोलो तो महीना दो महीनों घर उसका अपना वो छोटे से फ्लैट के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। कपड़े का कोई शौक नहीं, कोई खाने का शौक नहीं, ना कहीं जाने का शौक है, ना होटल में जाने का शौक है, ना बाहर घूमने का शौक है।
1: नाना के साथ कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहेगी, याद रहे सब कुछ?
2: नाना के साथ मेरे जिंदगी का बहुत सारे घटनाएं हैं।
1: हाँ।
2: तो पर एक मत मजे का घटना है जो मैं कभी कभी मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। उसमें एक चीज पता चलता है जो आदमी कितने अलग है।
1: अच्छा।
2: उस घटना से वो घटना ये था जो मुझे एक दिन बोला नाना ने, तो चल मैंने एक जगह देखा है, फार्म हाउस बनाएंगे।
1: हाँ।
2: है पुणे का पास है, चल तुझे लेके चलता हूँ, देखते हैं, देख के आते हैं।
1: हाँ।
2: और मैं बोला अच्छा, बोले तुझे तो कमाल की लगेगा, मुझे मालूम है। उसको लगता वो उसको मालूम था जी मैं कविता भी तरह लिखता।
1: हाँ।
2: और मेरी नेचर उस तरह है।
1: हाँ।
2: नेचर तो हम लोग साथ में पुणे गए, तो वहां पर बहुत बड़ा नदी था, डैम था। तो मैं बोला यहाँ पर कहीं जमीन ले रहे क्या?
1: हाँ।
2: जगह तो अच्छा लग रहा है।
1: हाँ।
2: बोले नहीं रे यहाँ नहीं है, अभी और आगे जाना है। बोला आगे कैसे जाना है, अभी तो खत्म हो गया, मतलब जगह हुआ एंड हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो बोले नहीं अभी हम लोग बोट है, अभी बोट देख नीचे भाई बोला बोट तो है। बोले बोट से हम क्रॉस करेंगे।
1: हाँ।
2: वहां पर हमारे एक दोस्त ऑलरेडी वो पहाड़ पे बना है।
1: हाँ।
2: तो बोला अच्छा तू वो लेना चाहता है? बोला नहीं चलना तू अभी मुझे लेके बोट पे, हम लोग पूरा नदी क्रॉस किया, काफी बड़ा नदी क्रॉस करके हम लोग आए एक पहाड़ के ऊपर। ये उसका दोस्त ने बहुत अच्छे जगह बनाए। तो अच्छा, और बरसात का टाइम, जस्ट गर्मी खत्म हुआ मुंबई का।
1: हाँ।
2: पहला बरसात जैसे हुआ उस समय, पता नहीं बारिश से बहुत लगा हुआ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: मतलब बरसात होगा तो मैं भीगूंगा जरूर।
1: क्या बात?
2: अपने छत पे हो।
1: हाँ।
2: या रास्ते पे हो।
1: हाँ।
2: या कहीं भी हो।
1: हाँ।
2: मुझे भीगना है।
1: अच्छा।
2: मुझे छतरी नहीं चाहिए।
1: हाँ।
2: तो मुझे बहुत भीगने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर आ गए, भीगा पानी में एकदम, पर घनघोर बरसात।
1: हाँ।
2: तो भाई बोला अभी क्या करें? बोला अभी चलेंगे ना जगह देखने। बोला अभी जगह देखने कहाँ जाएंगे अभी? बोला अभी तुझे बारिश में तो प्रॉब्लम। बोला मुझे एंजॉय हो रहा है यार, क्या खूबसूरत बारिश था, मजा आ गया। फिर हमने फिर बोट पे चढ़ा,
1: फिर बोट पे
2: स्पीड बोट दोस्त का।
1: अच्छा।
2: तो फिर स्पीड बोट अभी नदी का उल्टा तरफ, नदी का तरफ मतलब जहां से नदी शुरू हुआ उस तरफ,
1: उस तरफ चल दिया।
2: चारों तरफ से पहाड़।
1: हाँ।
2: और नदी और बारिश।
1: हाँ।
2: और कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है।
1: हाँ।
2: तो मैं बोला कितने दूर जाना है? बोले 10 किलोमीटर। बोले नदी में 10 किलोमीटर जाना है?
1: हाँ।
2: उसका बाद तेरा वो जगह आएगा जहां तू फार्म हाउस बनाएगा। अल्टीमेटली 10 किलोमीटर अंदर चले गए नदी में।
1: हाँ।
2: और दोनों बाजू कुछ नहीं, मतलब एक आदमी नहीं, एक घर नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक जगह पे आके गाड़ी बोट रुका
1: दिया। हाँ।
2: और बोले ये जो पहाड़ है नाना।
1: हाँ।
2: ये तेरे, इसके लिए मैं बोल रहा था, तुझे पसंद है।
1: अच्छा।
2: मैं बोला नाना ये क्या, ये तो पहाड़ है, यहाँ पर तू एक आदमी आएगा कैसे,
1: यहाँ फार्म हाउस कैसे बनाएगा?
2: नहीं, बनाएगा फिर बनाएगा तो चल कुछ भी करके तू बनाएगा, पर यहाँ तो आदमी क्या कोई, मतलब मुझे बर्ड्स भी नजर नहीं आ रहे, कोई आएगा क्या, रहेगा कैसे तू?
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी पत्थर के सनम। श्रोताओ, नाना पाटेकर को लेकर जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सई परांजपे, जिन्होंने चश्मे बद्दूर और स्पर्श जैसी फिल्मों को बनाया है, आप जानते ही हैं क्या कह रही हैं नाना पाटेकर के लिए, आइए सुनते हैं।
1: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
2: जी जी
1: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सई आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन

0: पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि वो ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो, तुम्हारा मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई।
2: ये थी जानी मानी फिल्म निर्देशिका पद्म भूषण सही परांजपे जो बातें कर रही थी नाना पाटेकर के लिए। आपको ये रिकॉर्डिंग श्रोताओ हमने सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से, जिसमें ये दोनों ही रिकॉर्डिंग आपने सुनी, फिल्म निर्देशक पार्थ घोष और पद्म भूषण सही परांजपे की बातें थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म महबूबा का दो गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: फिल्म लावारिस का ये गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया, अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित चोर फिल्म का गीत आपने सुना, येसुदास की आवाज में गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: प्रादेशिक समाचार, समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूर संचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूर संचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार वस्तु और सेवा कर GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन सुधारों का उद्देश्य GST व्यवस्था में मौजूदा कई प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना और खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। पंचायती राज चुनाव 2026 में अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,50,000 और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित है। लाउडस्पीकर और प्रचार वाहनों के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव EVM से, जबकि सरपंच और वार्ड बेंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। फर्जी मतदान रोकने के लिए संदिग्ध मतदाताओं की जांच की जा रही है। बिना परिचय पत्र के मतदान की अनुमति नहीं होगी। सरपंच और वार्ड पंच की मतगणना मतदान के दिन ही की जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतों की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज टोंक जिले का दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में ईसरदा बांध परियोजना सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्य सचिव ने टोंक साइबर थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद वे कोटा के लिए रवाना हो गए। डीग पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले भर में साइबर चौपाल अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव-गांव पहुंचकर युवाओं और ग्रामीणों से संवाद कर रही है। चौपालों में साइबर अपराध से बचाव और इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभियान के तहत जागरूकता के साथ साथ साइबर अपराधियों पर निगरानी और कार्रवाई भी की जा रही है। अभियान में युवाओं, बुजुर्गों और आमजन की भागीदारी हो रही है। सवाई माधोपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत आज वॉक फॉर मेंटल हेल्थ मैराथन का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समीक्षा गौतम ने दशहरा मैदान से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। ये मैराथन हाउसिंग बोर्ड पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें चिकित्सकों, नर्सिंग विद्यार्थियों, विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्मिकों, अधिकार मित्रों और लायंस क्लब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नर्सिंग विद्यार्थियों ने नारों और संदेशों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, तनाव और मानसिक समस्याओं में समय पर चिकित्सकीय सहायता लेने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 में अब हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
6: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
6: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
5: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
6: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।

0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर को याद किया है। आप अपनी बातें, अपने उद्गार लिख सकते हैं श्रोताओं। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे जरूर। और अंकुश फिल्म का ये गीत हमने श्रद्धांजलि स्वरूप सुनवाया अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजें थी। अभिलाष का लिखा ये गीत था, कुलदीप सिंह की तर्ज थी। और हमारा आज का जो शेष कार्यक्रम है, फेसबुक पर जो दी गई इबारत है उसी के अनुसार है। तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है, गुलाबी ठंड इसलिए खास है क्योंकि इसमें मौसम केवल बदला नहीं करता, मन भी बदलने लगता है। ठंडी हवाएं भीतर की उदासी को सहलाती हैं, धूप स्मृतियों को गर्माहट देती है, धरती ने लाल चुनरी ओढ़ी है, आसमान ने प्रेम का संदेश संभाल रखा है और पूरी प्रकृति किसी अनकही मोहब्बत की खूबसूरत गवाह बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये हमारी एक श्रोता लिखती हैं। वैसे हरुद नाम का एक शब्द हमने अपनी इबारत में इस्तेमाल किया है श्रोताओं, ये शब्द किस बाबत हमने लिखा है, अगर ये आप बताएं तो क्या ही अच्छा है। वैसे ये शब्द कश्मीर की वादियों से वाबस्ता है, ये आपको बताना है। और आपके शहर में मौसम कैसा है अब, ये आप बताइए हमें। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं, ठंड की चादर धीरे धीरे दस्तक दे रही है, खुशनुमा वातावरण चारों ओर फैल रहा है, सुबह फूलों में ओस की बूंदे, फिजाओं की रुमानियत, गुलाबी ठंड रात में नहाई चांदनी सुर्ख वादियों में मोहब्बत का नजराना देखते ही बनती है, हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। और गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है, अश्विन महीना आ रहा है, बल्कि आ चुका है श्रोताओं, और गुलाबी ठंड की पहली तरल मखमली आहट सुनाई दे रही है, सुबह की ताजी हवा में अब एक हल्की सिहरन है, उषा काल में सूरज की गुनगुनी धूप घास की पत्तियों पर मोती जैसी चमकती ओस की नन्ही बूंदें मन को मोहित कर रही हैं, यही हल्की ठंड अपने साथ नवरात्रि, दशहरा और काजरी पूर्णिमा और दीपावली, इन मनभावन त्योहारों की खुशबू और गर्माहट को लेकर आ रही है। जी हाँ, इंतजार ही तो रहता है और इंतजार जब मुकम्मल हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे गुलाबी शब्द से जो गीत आपको याद आ रहे हैं वो आप हमें लिख सकते हैं और अपने शहर का मौसम जरूर बताइए।
1: हर चेहरा यहाँ चांद

श्रोताओं, तो इस गीत के गीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। वैसे इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो इसमें बहुत ही अलग और कम चर्चित एक कलाकार थे, तो उनके बारे में भी अगर, यानी उनका नाम अगर आप लिखें तो क्या ही बात है। आबरू फिल्म का गीत हमने आपको सुनाया, सोनी ऊमी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखा है कि हमारे सिने जगत को नाना पाटेकर जैसे कलाकार के जाने से बहुत क्षति हुई है, हमने एक शानदार कलाकार खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर जी का देश प्रेम फिल्मों में झलकता है, देश से बहुत प्यार था, उन्हें सामाजिक मुद्दों को बार बार फिल्मों के जरिए उठाते थे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नाना की हर फिल्म मैंने देखी है, उनके अभिनय की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। आज मुझे फिल्म प्रहार का सीटी वाला सीन याद आ रहा है, सीटी बजवाकर उन्होंने उस फिर एक मतलब इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं फिल्म की। एक श्रोता हमारे आज की जो इबारत है, टेक्स्ट है, उस पर लिखते हैं कि हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इस गीत को इन्होंने याद किया है। ठंडी हवाएं लहरा के आए, गुलाबी आंखें जो तेरी देखें। जी हाँ, गुलाबी शब्द तो ऐसा है श्रोताओं, इससे बड़े सारे सवाल हैं जो आज आपको बताने हैं। मसलन एक बड़ी प्यारी सी एक मछली है, उसका क्या नाम है जो गुलाबी होती है और कहें तो भारतवर्ष में पाई नहीं जाती, लेकिन आप बता सकते हैं तो बताएं कि उस मछली का क्या नाम है। और राजस्थान के खास शहरों को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। और अपने शहर का मौसम तो आप बता रहे हैं, गुलाबी ठंड क्या आपने राजस्थान में कभी महसूस की है, या इस समय कभी आप राजस्थान गए हो तो वो भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूप है लेकिन शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। जी हाँ, शाम भी बहुत ही सुहावनी होती है आजकल। ये फिल्म आपको पहचाननी है।

इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था श्रोताओ आबरू फिल्म का, वो दीपक कुमार पर फिल्माया गया गीत था और जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत था। वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना है, संत त्रिपाठी की तर्ज, और एक श्रोता के उद्गार हैं कि नाना पाटेकर जैसे कलाकार सदियों में आते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने दी है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह की

भी ठंड की। वैसे ये तो पूरा शहर, पूरा स्टेट ही कहें तो गुलाबी गुलाबी सा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में नाना पाटेकर जी का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और उनकी फिल्मों के बारे में लिखा है, क्रांतिवीर, तिरंगा, परिंदा, शक्ति, अग्नि, साक्षी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार से जान डाल दी। नाना जी की निर्देशित फिल्म प्रहार मुझे उनकी सबसे प्यारी फिल्म लगती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद आएगी उन्हें सबसे अलग करती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हारूद के बारे में कि जिसका कश्मीरी भाषा में अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, यह समय खूबसूरत मौसम सितंबर के अंत तक से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। जी हाँ, और जो अक्टूबर का महीना है श्रोताओं, ये खास कश्मीर जाने के लिए ये मौसम जो होता है, ये समय जो होता है बड़ा ही मुफीद होता है। इस समय अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि चिनार के पत्ते किस तरह से रंग बदलते हैं। और इसी को लेकर हमने इबारत की जो अंतिम लाइन थी वो लिखी थी, क्योंकि लाल सुर्ख रंग सी चादर कहें या ओढ़नी सी कहें कश्मीर में बिछी हुई नजर आती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर में हारूद का अर्थ पतझड़ का मौसम होता है, और कश्मीरी संस्कृति, जीवन शैली और आर्थिकी में इस मौसम का एक बेहद खास स्थान है। इसके साथ ही कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हारूद नाम की एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि कल शाम की बारिश है और भोर की बारिश ने हमारे शहर को बेहद खुशनुमा बना दिया है। हवाओं में ठंडक आ गई है और अभी धूप का टुकड़ा हमारे छत और बालकनी पर भी आकर सिमट गया है, जैसे कह रहा है ठंड आया है, मैं तो भी साथ में हूँ। जी हाँ, जहाँ ठंड देर से पड़ी है श्रोता, वहाँ पर तो ये बारिश जो होती है वो बेमौसम आती है, जिससे कि ठंडक को ला सके। फिलहाल गुलाबी ठंड है।

कश्मीर की अगर बात करें तो श्रोताओं, तारीफ कितनी भी करें, शब्द इस प्रदेश के लिए कम ही पड़ जाते हैं। आप सुन रहे थे एसएच बिहारी की रचना, संगीतकार आप अगर बता दें तो क्या बात है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गुलाबी डॉल्फिन अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है और इसके बारे में पूछा क्या सही है, इसको जानने का इंतजार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि नाना पाटेकर साहब चले गए और उन्हें हम याद करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि अपनी दमदार आवाज और अभिनय से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर जी को हम उनके श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की ये इबारत केवल मौसम के बदलाव का वर्णन नहीं करती बल्कि प्रकृति के मानवीय भावनाओं के बीच गहरे रिश्ते का एक सुकुमल दस्तावेज है। गुलाबी ठंड की आहट को हवाओं की सेहरन और फिजाओं की रोमानियत के साथ पिरोना बेहद असरदार है। ये ठंड सिर्फ तापमान का गिरना नहीं बल्कि भावनाओं के जागने का प्रतीक बन जाती है। ये तो बताइए श्रोताओं कि गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, यानी आपको सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल, गुलाबी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है, और दूसरा सवाल एक और है कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल खूब हमारे किस त्योहार में किया जाता है, और एक जगह की तो पगड़ी भी गुलाबी है। तो आप बताएं, ये सारे सवाल आपके लिए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो इस समय शाम को मस्त ठंडा मौसम हो जाता है लेकिन दिन में अच्छी धूप है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है, ठंडी गुलाबी हवा ने धीरे से दिल पर दस्तक जैसे दी है, फिजाओं में रंग से घुलने को आ गई, वो सुहाना मौसम, सुबह की धूप और घास पर ओस की बूंदे मोती बिखरने लगे, ऐसे में विविध भारती का साथ, वाह क्या बात है। जी हाँ, विविध भारती है हमेशा से आपकी साथी। तो ये गीत आप सुनिए और जो हमने सवाल आपसे पूछा वो भी बताइए। इस गीत में जो कलाकार नजर आ रहे हैं श्रोताओं, उनको अगर आप बता सकें उनके बारे में तो क्या ही बात है।

नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया द ट्रेन फिल्म का गीत आपने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने तमाम अपनी बातें हमसे साझा की हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी सुबह सुबह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, रात से ही ओस गिरना शुरू हो जाती है, सुबह तो ठंड लगती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि इस समय कश्मीर में फसलों और खासकर केसर की कटाई का मौसम ये माना जाता है, जिसे स्थानीय लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। और एक हमारे श्रोता नाना पाटेकर जी को याद करते हुए लिखते हैं कि इनकी फिल्म नट सम्राट देखी है, क्या भूमिका थी उस फिल्म में इनकी, और अभी तक वो आखिरी दृश्य याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि महान कलाकार नाना पाटेकर की संवाद अदायगी उन्हें बहुत पसंद है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नाना पाटेकर जी को याद किया है। वहीं हमारी एक श्रोता लिखती हैं कुछ गीतों के बारे में, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कहां सिलाई हो जाने मन किताबी चेहरा, और तमाम गीतों को इन्होंने याद किया है, लिखा है इसके बारे में। एक और श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम की गुलाबी ठंड, वादियों की हवाएं और चांदनी रातें अक्सर दिल में खास यादों का चिराग जला जाती हैं। इस खूबसूरत माहौल में किसी को याद करना और खो जाना स्वाभाविक। हवाओं में घुली है ये गुलाबी सी ठंड, चांदनी रात में बहकी है ये वादियां मलंग, ऐसे में दिल को कोई याद ना आए तो कैसे हो सकता है। और भी कुछ लाइनें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैं छत पर जाती हूं तो एक दो दिन से हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है मौसम करवटें ले रहा है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और जी हाँ, नाना पाटेकर की यादें तो कुछ ऐसी ही हैं। श्रोताओं, आज की इबारत जो गुलाबी ठंड को लिए हुए है, इसी बाबत हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो जो जयपुर है वो तो पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम आता है रात 8 बजे, इस इमारत की गुलाबी रंग को लिए क्या खासियत है ये आप हमें बताएं, और हम किस इमारत की बात कर रहे हैं।

राष्ट्रीय और शमी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म जानवर का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे श्रोताओ। अब कुछ सवाल जो हमने आपसे पूछे थे कि गुलाबी रंग किन रंगों को मिलाकर बनता है, ये आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप इसे जरूर भेजें। और एक तितली होती है श्रोताओ जिसके गुलाबी पंख होते हैं, ये कौन सी तितली है? मतलब दो तीन सवाल की बौछार आप पर कर दी जाए मुझे ऐसा लगता है। और गुलाबी जो चूड़ियाँ हैं उनका बाजार भारत में कहाँ है? एक और आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि एक सुंदर सा गुलाबी फूलों का पेड़ होता है, इस पेड़ को यानी इस फूल को क्या कहते हैं? तो अब बढ़ते हैं उन श्रोताओं के कमेंट्स की तरफ जिन्होंने अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हर बदलता मौसम अपने साथ एक नई आभा लेकर आता है और प्रत्येक जाने वाला मौसम अपनी नियति जानता है। जाने वाला मौसम विदा लेते समय कुछ मुरझाया सा कुछ अलसाया सा लगता है, इसलिए गुलाबी ठंड लिए इस मौसम में मन में अलग ही उत्साह का सुरूर रहता है। बदलते मौसम के मन पर कोई व्याख्या नहीं लिखी जा सकती, जो सामने है उसका स्वागत करके ही जीवन को चलाने का हुनर सीखना होगा। गुलाबी ठंड अपने साथ ढेर सारे उत्सव लेकर भी आती है और ये सच है कि ये प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन करती है। हर बदलता मौसम इसकी पहचान है। तो ठंड जो है उसकी तो शुरुआती दौर है और आपने इसकी बहुत सारी तैयारियां भी की होंगी, तो क्या खास आप ध्यान दे रहे हैं ये भी आप हमसे बता सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं, ठंड, रोशन नजर, पर्दा, गुलाबी, कश्मीर और सपनों जैसे ये शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं चला मौसम में कब गुलाबी सर्दी ने अपना शबाब घोल दिया। सुबह योगा में जाती हूँ तो पार्क में हरी घास पे छोटी छोटी शबनम की बूंदें किसी चमकीले मोती सी लगती हैं। हल्की सी सिहरन उड़ते हुए पंछी, नीला आकाश, सब कुछ जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो क्या इन ओस की बूंदों को कभी आपने छुआ है? तो आप जरूर बताएं। वैसे हमारे आज के जो गीत हैं श्रोताओ उनमें भी आपने देखा होगा कि गुलाबी रंग छाया हुआ है, जैसे इस गीत में।

0: मुखर्जी और तनुजा पर फिल्माया गया एक बार।
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कहाँ है वो भी आप जरूर बताएं, अगर आप बता सकते हैं तो। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ कोलकाता में आषाढ़ महीने से बारिश लगी हुई है, जो अभी अश्विन मास तक भी हो रही है। कल भी बरसात हुई थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडी सी हवा शुरू हो गई है। हवा में पूजा का पूरा असर, जगह जगह पंडाल बनने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर बहुत ही खुशनुमा वातावरण है हमारे कोलकाता में। जी हाँ, और इस समय लोग जो है ना बड़ी अलग अलग जगहों पर सैर के लिए जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खुशगवार होता है। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो वो कौन सा शहर है जहां आप जाना चाहते हैं या जहां जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे कच्छ में भी जो है वो ठंड शुरू हो गई है। और इस तरह से कई हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो तेज धूप निकली है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। कलाकार और फिल्म आपको पहचाननी है।

बड़ा ही खूबसूरत था लंदन पैलेस का ये सीन। श्रोताओं, नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। माला सिन्हा और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था, आनंद बख्शी की रचना थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब गार्डन में पैरों पर छोटी छोटी बूंद बिखरी रहती है, यानी ओस की बूंदों की ये बात कर रही हैं, तो उनको छूकर आंखों से लगाने में बहुत सुखद एहसास होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ओस की बूंदें जो हैं उन पर चलते हैं या फिर उन्हें आंखों में लगाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे ठंडियों की सुबह सवेरे 5 बजे जो गुलाबी ठंड पड़ती है मेरे मन को बहुत लुभाती है। मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। सुबह सुबह ठंड में टहलने बहुत पसंद है, टहलना बहुत पसंद है जब हल्की हल्की ठंड होती है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं हाल ही में राजस्थान के एक साल में पयाना बंसी पहाड़पुर हिंटोन सिटी रहकर मंदिर के लिए पिंक पत्थरों को नक्काशी बनवा कर ही आया हूँ, तो शायद इन्होंने इस पर काम भी किया हुआ है। तो उस बारे में ये लिखते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं श्रोताओं जो राजस्थान की वादियों में रहते हैं और जो गुलाबी बलुआ पत्थर होते हैं उनके काम यानी ऐतिहासिक इमारतें खूबसूरत जगहों का निर्माण करते हैं आज भी। तो ऐसे हमारे कोई श्रोता हैं तो अपनी बातें वो भी लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गुलाबी और पीला रंग अक्सर पूजा पाठ और शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाबी रंग की बात करी थी श्रोताओं, होली में बड़ा इस्तेमाल होता है ये रंग, इसका जवाब ये था। और होली में तो बहुत सारे रंग इस्तेमाल होते हैं लेकिन गुलाबी रंग खास नजर आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जी हाँ, मैंने राजस्थान की गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड में बहुत भ्रमण किया है। राजस्थान का ही वाशिंदा हूँ, बेशक दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के गुलाबी किले भी देखने लायक, विशेषकर अक्टूबर से फरवरी तक। और अब आपको ये कलाकार पहचानने हैं।

0: एक पक्षी है श्रोताओ जो गुलाबी रंग के लिए मशहूर है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। और हमने आपसे पूछा था कि जो राजस्थान है उसमें गुलाबी जो इमारतें हैं उनकी खासियत क्या है, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि गुलाबी रंग के पत्थर से ये बनी होती हैं। और एक सवाल हमने आपसे अभी भी पूछा है जो आपको बताना है। और एक पेड़ है जिसमें गुलाब के फूल जो है वो खूबसूरती से खिले होते हैं, चेरी ब्लॉसम ये है। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ये किस फिल्म का गीत है?

0: को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर।
1: एक फूल दो माली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधना और संजय खान पर फिल्माया गया। इसके पहले शिकारी का गीत हमने आपको सुनवाया, अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया वो गीत था। श्रोताओं, एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि बेईमान ही होता है, मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका इंतजार भी बना रहता है। हमको प्रकृति को प्यार करने वाले को मौसम का रूठना फिर वापस आना, ये भी जीवन की एक प्रक्रिया होती है। अब आप एक सवाल और बता दें, एक तो हमने आपसे एक फल का सवाल पूछा है कि हरे और गुलाबी रंग का ये जो फल होता है, यानी अमरूद भी शायद हमने आपको बताया है, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। और एक गुलाबी रंग की झील है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो जरूर लिखें। ये कौन से शहर की शूटिंग है श्रोताओं?

आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। जिस झील को हमने पूछा है श्रोताओं, ये लेक हिलर झील है ऑस्ट्रेलिया की, जो गुलाबी रंग की है और ये अमरूद प्रयागराज यानी इलाहाबाद के खुसरो पार्क में पाया जाता है।

फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

नमस्कार दोस्तों, आसमान को देखकर अक्सर हमारे मन में उड़ने की इच्छा जागती है, लेकिन किसी देश के लिए आसमान सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं, उसकी सुरक्षा का प्रहरी होता है। जल, थल और नभ देश की सुरक्षा की ये तीन मजबूत स्तंभ हैं, और नभ की जिम्मेदारी संभालती है हमारी भारतीय वायुसेना। जी हाँ, आज 8 अक्टूबर, आज है भारतीय वायुसेना दिवस, वो दिन जब हम उन जाबाजों को सलाम करते हैं जिनकी निगाहें आसमान पर और दिल तिरंगे के साथ धड़कता है। वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान में नहीं, असली ताकत है उन वीरों का साहस जो देश के लिए हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं।

उड़ान सुनने में कितना खूबसूरत शब्द है, लेकिन एक वायु योद्धा के लिए उड़ान सिर्फ रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते वक्त हर पल सतर्क रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी तक लगा देना, इसके लिए सिर्फ पंख नहीं हौसला चाहिए। वायुसेना में शामिल होने वाला हर जवान अपने भीतर एक ऐसा दिल लेकर उड़ता है जिसे ऊंचाई डराती नहीं बल्कि चुनौती देती है, क्योंकि कुछ उड़ानें मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ उड़ानें वतन के लिए होती है।

वायुसेना की कहानी सिर्फ आसमान में दुश्मन के मुकाबले की कहानी नहीं है। जब बाढ़ में गांव डूब जाते हैं, जब भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जब किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोग मदद का इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी आसमान से मदद उतरती है। कहीं हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, कहीं भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाते हैं, और कहीं हमारे जवान अपने साथियों को कठिन से कठिन स्थान तक पहुंचाते हैं। योद्धा हो या आपदा, सीमा हो या संकट, भारतीय वायुसेना ने बार बार अपने साहस और सेवा का परिचय दिया है। और जब इन वीरों को आकाश की ऊंचाइयों पर तिरंगे के साथ देखते हैं तो मन में बस एक ही भाव आता है, इनकी उड़ान भले ही आसमान में हो, लेकिन इनके दिल में हमेशा तिरंगा रहता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस

0: ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
2: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
3: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
4: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
5: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ

0: हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
1: तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9-2-11 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था, संगीत चित्रगुप्त का था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: रवि की तर्ज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म जानवर का दो गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब आपको सुनवाते हैं वो कौन थी इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में राजा मेहदी अली खां के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज। और यही है श्रोताओं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: अगर अचानक आपसे कोई पूछे कि आपको कोई कविता याद है, कोई गीत याद है, कोई लोरी याद है, तो आप क्या जवाब देंगे?
2: मुझे तो लोरी याद आ जाएगी। हाँ। क्योंकि जो बचपन में सुनी हुई होती है ना लोरियां, वो दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है कि झट से मुंह में वो लोरी ही आ जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे विलुप्त हो रही है लोरियां।
2: हाँ।
1: अभी मैंने कई माओं को ऐसे सुना है कि क्या करें, बच्चा सोता नहीं है, हम क्या करें, कहानी हमें आती नहीं है, कहाँ से लाएं कहानी। तो उन्हें बताना पड़ता है कि आप कहानी खुद बुनिए। किताब जब मांगते हैं लोग, माएं मांगती हैं कि हमें कोई किताब दे दो, उसमें से पढ़ के सुना दे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कहानी खुद बुनिए, धीरे धीरे बच्चा भी सीखेगा। इसी तरह से लोरी आप गा के सुनाइए उनको, तो अपने आप गाने का संगीत का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर, अंतर मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो विलुप्त हो रही है लोरियां, हमें लगता है कि वो पारंपरिक गीत, वो लोरियां वापस ले आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ गूगल में न ढूंढे, उसे बाकायदा गाए, गुनगुनाए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
2: ये हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि आजकल मम्मियों को टाइम ही नहीं होता है, तो कहां से लोरी गाएंगी। तो वो ऐसे करती है कि मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों के सामने और उसमें कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी गाना चला देती है, तो बच्चे उसी से आकर्षित हो जाते हैं। पर जो खुद गा के हम जो सुलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनत्व का भाव बच्चे के प्रति आ जाता है। और दूसरा, जो हम हमेशा क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो माँ और बच्चे के बीच का जो नाता है वो और भी गहरा होता है।
1: और जब बड़े होते हैं बच्चे, तो जो माँ की थपकी है, माँ के आंचल पर लेट कर लोरी सुनने का आनंद, वो याद रहता है। चित्र, मोबाइल और ये सब
2: भूल जाते हैं,
1: नहीं याद रहता है
2: जी।
1: और ऐसे ही हम सबका एक नजरिया होता है कोई चीज देखने का, और आंखें कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है
2: जी।
1: तो अगर किसी के पास आंखें नहीं है, तो सोचिए कि दुनिया कितनी फीकी है
2: जी
1: लोगों के पास। तो आज दरअसल हम बात करें विश्व दृष्टि दिवस की
2: जी।
1: तो किस तरह से अपनी आंखों की देखभाल करें, किस तरह से हिफाजत करें, और दूसरों को अपनी आंखों से रोशनी कैसे दे सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें।
2: नेत्रदान जी। और साथ ही आज वायुसेना दिवस भी है, उस बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक खास मुद्दा है ममता जी, मुझे कुछ कहना है, इसके अंतर्गत बेटे बेटी में भेदभाव, जो आजकल थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, पर अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर घर में ही बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है, कि बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है जबकि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। खाने पीने मामले में भी बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है।
1: तो इसमें खास तौर से सखियां अपने अनुभव जरूर साझा करें कि उनके घर में क्या हुआ है, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो किस तरह से ये मैनेज करती है, वो लिखें। और इसके अलावा
2: कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम छुटनी महतो के बारे में जानकारी देंगे।
1: और सुना लीजिए, आज एक दुखद खबर मिली है, बहुत बड़ी दुखद
2: जी।
1: वो जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में, कि वो इस दुनिया से, आज उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और उनके संवाद में कितनी गहराई थी, अभिनय में उनकी ऐसी ताकत थी कि सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचती थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारी उनकी फिल्मों के संवाद हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराते रहे हैं। और ये कहा जाता है बड़े दबंग व्यक्तित्व वाले रहे और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उनकी रही। तो वो जो क्या कहा जाता है कि अपनी बातों में आग उबलते थे कई बार, और वो आग बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई के रूप में सामने आता था। तो आज वो नहीं है भले ही, लेकिन हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे
2: जी। और उनके निभाए किरदार और उनकी बुलंद आवाज हमेशा दर्शकों के स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी ममता जी। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार, मित्रों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।
1: सुनते हैं नाना पाटेकर की फिल्म का ये गाना।

0: ये हमने नाना पाटेकर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये गाना सुनवाया इस प्रोग्राम में, और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि एक और प्रोग्राम हम प्रसारित करने वाले हैं शाम को 5:30 पर, नाना पाटेकर से बातचीत, जो हमारे विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित है और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन के किस्से हैं उसमें, उनकी फिल्मों के किस्से हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि नाना पाटेकर से कई बार मुलाकात का मौका मिला, और ये बातचीत जब हमने रिकॉर्ड की थी कई साल पहले तो हम उनके निवास पर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, उनके स्टूडियो में गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान नजर आए थे, और इतनी सहजता से इतनी विनम्रता से वो बातचीत की है कि मैं क्या कहूं, इस वक्त बातें करते हुए उनका चेहरा आंखों के सामने, और इसके अलावा कई बार मुलाकात हुई। तो आज 5:30 पर हमारे श्रोता वो प्रोग्राम सुन सकते हैं जो उन्हें उनके नाम पर हम प्रसारित कर रहे हैं
1: जी।
0: और
1: आज वायुसेना दिवस भी है। तो वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में वायुसेना के वीर जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है।
0: और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में भी वायुसेना का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीकी शक्ति का प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं।
1: और ये दिन देशवासियों को उन वीर योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर परेड, एयर शो, विमान प्रदर्शन और हवाई करतब आयोजित किए जाते हैं।
0: वायुसेना केवल साहस और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी, तकनीकी दक्षता और देशभक्ति का संगम भी माना जाता है। वायु योद्धाओं का जीवन युवाओं को यह संदेश देता है कि ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और साथ में आत्मविश्वास और अनुशासन बहुत ही जरूरी है।
1: साथ ही ममता जी, आज एक और खास दिन है, विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे। प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है, और 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को आंखों की देखभाल, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार के प्रति जागरूक करना है।
0: क्योंकि आंखें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। दुनिया को देखना, पढ़ना, लिखना, काम करना, सीखना, सब कुछ आंखों से ही तो होता है। लेकिन आंखों की जब अनदेखी करते हैं तो फिर आंखें आपको परेशान कर सकती हैं। बढ़ता स्क्रीन टाइम और डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां भी आंखों को प्रभावित करती हैं। पोषण की कमी और नियमित आंखों की जांच न करवाने से भी दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है ममता जी कि दृष्टि की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कई दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। कि जैसे समय समय पर आंखों की चेकअप करवाना चाहिए, साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में आंखों को आराम देना चाहिए
0: और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। ये जो बात आपने कही ना कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का लगातार इस्तेमाल, इससे तो कोई बच नहीं पाता है। और लगातार मोबाइल स्क्रीन के सामने लोग काम करते हैं, कुछ तो मजबूरियां भी होती है, लोगों की जॉब है ऐसी कि आपको लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। लेकिन उसका उपाय है, डॉक्टर्स उपाय बताते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखिए, पलकों पर हाथ रख के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, और या फिर पानी से थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को धोते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नुस्खे हैं जिससे आप आंखों को आराम दे सकते हैं। और धूप में जब जाएं तो जो काला चश्मा होता है वो लगाएं, उससे भी आंखों को सुरक्षा मिल जाती है। और आंखों में कोई समस्या हो तो बिना सलाह के दवा या आई ड्रॉप कतई ना लें।
1: नहीं तो ऐसा होता ना कि घर में एक कॉमन रखा हुआ होता है सभी के फ्रिज में, और बस लोग लेते हैं, डाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सबकी आंखों के लिए अलग अलग आई ड्रॉप्स होते हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लेके ही कोई दवाई आंख में डाले। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, हरी सब्जियां, फल, दालें और पोषक आहार को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। और जिनको डायबिटीज वगैरह है, जैसे उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें नियमित आंखों की देखभाल जांच करवानी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि आंखों की रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के रंगों को महसूस करने का जरिया है। तो अपनी सेहत के साथ अपनी आंखों को भी प्राथमिकता देना चाहिए और दूसरों को भी दृष्टि की सुरक्षा के लिए जागरूक करना चाहिए। और मरणोपरांत आप आई डोनेट कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है ना किसी के दिल में उतरना है तो आंखों के जरिए। आप आंखें, एक आंखों से आंखों में बातें होती हैं। और तमाम गीतकार शायर ने आंखों पर शायरी की है, गीत लिखे हैं। एक गीत ये जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म चिराग। सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथी नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि ममता जी की नाना से सुनी मुलाकात हमें बहुत भाई थी।
1: क्या बात है, शुक्रिया। तो फिर जिन्होंने नहीं सुनी है ये बातचीत, आज शाम को 5:30 पर सुन सकते हैं। और अब देखिए ना, बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जो हम शामिल करेंगे। और

0: फिर उन्होंने संघर्ष किया और बाकायदा मोर्चा निकाला। इसको इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, मुहिम चलाई
1: जी। और ममता जी कभी वे स्वयं भी इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। छिटनी महतो ने बाद में अपने जीवन में उन महिलाओं की मदद और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें अंधविश्वास के कारण प्रताड़ित किया जाता था।
0: और सोनाली जी यहाँ एक बात और बताना है, जैसे कि बहुत सारे घरों में आज भी ये सब देखा जाता है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी में है, कोई मानसिक बीमारी है, तो लोग टोना टोटका करवाते हैं, कहते हैं अगर इसके ऊपर किसी का साया पड़ गया है। और बहुत सारे आप मंदिरों मस्जिदों में भी जाकर देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के भूत पिशाच से दूर भगाने की मुहिम
1: उतारा जाता है जी।
0: तो दरअसल समस्या क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस अपना, कि अगर कोई समस्या है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण किया जाए
1: जी,
0: न कि भूत पिशाच के जरिए।
1: अंधविश्वास को दूर भगाना है। और छुटनी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोला डीह क्षेत्र से जुड़ी है। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। कुछ वर्षों तक उनका पारिवारिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन 1995 में परिवार के एक बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक व्यक्ति ने उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ।
0: और 1995 की वो घटना जिसने जीवन बदल दिया। गाँव में अंधविश्वास इतना ज्यादा गहरा था कि छुटनी महतो को डायन कहकर सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा तो और उनकी संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई इसी वजह से कि वो डायन है। बाद में उन्हें अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा आखिरकार।
1: ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनी। गांव से निकलने के बाद छुटनी महतो की मुलाकात एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से हुई जो इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कानून प्रशासन और जागरूकता के माध्यम से इस कुप्रथा का मुकाबला करना उन्हें सिखाया। 1990 के दशक के मध्य से ही उन्होंने ऐसी महिलाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी आशा नामक संस्था के साथ मिलकर काम किया। वे प्रभावित महिलाओं तक पहुंचती, उनके मामलों की जानकारी जुटाती और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा प्रशासन की सहायता से उन्हें सुरक्षा दिलाने का प्रयास करती।
0: छुटनी महतो ने केवल पीड़ित महिलाओं की मदद ही नहीं की बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या पारिवारिक परेशानियों को जादू टोने से जोड़ना गलत है। उन्होंने महिलाओं को यह भी संदेश दिया कि अंधविश्वास के सामने चुप रहना समाधान नहीं है, ठीक नहीं होता। शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला भी करना चाहिए।
1: और उनके अथक प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सैकड़ों से अधिक महिलाओं की मदद की है। और छुटनी महतो पुनर्वास केंद्र से भी जुड़ी रही जहाँ ऐसी महिलाओं को सहायता मिलती है जिन्हें डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया था। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं की एक टीम भी विभिन्न गांवों में ऐसे मामलों पर नजर रखती है और सूचना मिलने पर सहायता के लिए पहुंचती है।
0: और उनकी कोशिश केवल किसी एक पीड़ित महिला की समस्या हल करना नहीं था बल्कि समाज की सोच को बदलना था। छुटनी महतो के लंबे सामाजिक संघर्ष और समाज सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। दिन था 25 जनवरी 2021 जब उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में झारखंड से उनका नाम शामिल किया गया। यह सम्मान उनके व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ उन सभी महिलाओं के संघर्ष की भी पहचान बना जो अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।
1: और छुटनी महतो का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अंधविश्वास का मुकाबला जागरूकता से किया जा सकता है, व्यक्तिगत पीड़ा को समाज की भलाई की शक्ति में बदला जा सकता है, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है और एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। छुटनी महतो की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। जिस कुप्रथा ने कभी उनके अपने जीवन को झकझोर दिया था उसी के खिलाफ उन्होंने जीवन भर आवाज उठाने का फैसला किया।
0: और उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की बेहतरी का माध्यम बनाया और उनका जीवन हमें भी तो सिखाता है अंधविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटी सी जागरूकता की लौ भी काफी होती है और छुटनी महतो उसी जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने

0: चाल बनकर सामने आए हैं। तो अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: जी।

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो

0: दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली।
2: ममता जी, एक सखी ने लिखा है कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि छूटता ही नहीं। अभी सोने की इच्छा थी, कमरे में जाकर लाइट भी बंद करी, फिर मोबाइल पर चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उंगली बढ़ाई, ना ना अब तो रिटायर हुई ऑफिस की भी बंदिश ने, खुरपी कैंची और गार्डनिंग का सामान लेकर बाग में आई, गाना चल रहा है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में क्या रखा है।
1: क्या बात है, तो गार्डनिंग कीजिए, सोने के लिए रात है ना, दिन में सोने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा आराम जरूरी है
2: जी।
1: तो लेकिन वो आराम सखी सहेली के समय तो मुलतवी की कर सकती है
2: जी। एक हमारे साथी ने नेत्रदान के बारे में लिखी है, आंखों या चक्षुदान की बात निकली है, तब एक दुर्घटना याद आ गई। हमारी सोसाइटी के एक परिवार का इकलौता बेटा जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच सजाने के कार्य के दौरान ऊंचे टेबल से गिर जाने की वजह से मौके पर ही उनका मृत्यु हो गई। और उनके माता पिता ने इस दुख की घड़ी में भी देर न करते हुए उनकी आंखों को दान करने का त्वरित निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनका बेटा किसी दो व्यक्ति में अपनी आंखों के द्वारा जीवित है।
1: क्या बात है, नेत्रदान महादान कहा जाता है, तो इसमें चूकना नहीं चाहिए और ये शुभ काम जरूर करना चाहिए। और सोनाली जी, आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा था जब घरों में दिन की शुरुआत और अंत भी गीतों से होता था। हमें तो याद है बचपन में कि सुबह उठते ही रेडियो शुरू हो जाता था और रेडियो से सुबह सुबह भजन आया करते थे। हालांकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे घरों में ये होता है, सुबह के मंगल गीत, त्योहारों के गीत, विवाह गीत, रात को माँ की गोद में जो लोरी सुनाई देती थी, ये सब हमारे जीवन का सहज हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कहीं कहीं अब जैसे गायब हो रही,
2: पीछे छूटते जा रहे हैं ना ये सब बातें। लोरी केवल बच्चों को सुलाने की धुन नहीं थी, बल्कि माँ के प्रेम, दादी नानी के अनुभव और परिवार की भावनाओं का संगीत था। और इसी तरह पारंपरिक गीत हमारी लोक संस्कृति के ऐसे धरोहर थे जिन्हें किताबों से नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सीखा जाता।
1: बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये सीखो, सीख कर हम पता चला कि मोबाइल में ढूंढ रहे हैं गाना और लोरी, फिर उस अपने बच्चे को सुना रहे हैं, बल्कि सुन सुन के याद भी हो जाती थी, वो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
2: उसकी धुन भी याद हो जाती थी।
1: तो बाकायदा टेक्स्ट ढूंढा जाता है, गाने के गीत के टेक्स्ट कहाँ मिल जाए, तो हम लिरिक्स मोबाइल से पढ़ते हैं और गाते हैं, हम मतलब आप
2: जी
1: मतलब हम सभी। आज जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें पारिवारिक संरचना ही ऐसी हो गई है कि इन गीतों की गूंज जैसे गायब हो रही है, पहले की तुलना में कम होती जा रही है। बहुत सारे लोकगीत हैं, लोरियां हैं ऐसी जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सुना भी नहीं होगा, और बच्चे के रोने पर माँ का उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे गुनगुनाना, जैसे कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे, फिर वो मतलब अपने जैसे उस बच्चे का नाम लेके कि अपने बच्चे का नाम
2: उसने कि उसके नाम जोड़े जाते थे,
1: कहाँ किसी का नाम जोड़ दिया, तो ये होता था और ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती थी, सहज निकलता था मुंह से। और लोरी के शब्द भी बड़े सरल होते थे लेकिन उनमें भावनाओं की बड़ी गहराई होती थी। कभी माँ बच्चे के भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी उसे में, और कभी उसके लिए सुख समृद्धि की कामना भी करती थी, और कभी प्रकृति चांद सितारों और पक्षियों को अपनी लोरी का हिस्सा बना लेती थी। और बहुत सारी महिलाएं जिनमें गीत और कविता की प्रवृत्ति होती थी उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके भीतर एक कवि
2: छिपी हुई प्रतिभा है जी। और दादी नानी की लोरियों में तो उनके अपने जीवन के अनुभव भी घुल जाते थे ममता जी, इसलिए लोरी बच्चे को नींद देने के साथ साथ परिवार के स्मृतियों को भी जीवित रखती थी। और फिर पारंपरिक गीत भी, हर अवसर पर पारंपरिक गीत गाए जाते थे, विवाह गीत, शादी के अवसर पर महिलाएं मिलकर गाती थी, बन्ना बन्नी के गाने गाते थे। और
1: आपको याद है क्या बन्ना बन्नी? तो कभी हम लोग तैयारी से आएंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे,
2: बट ढोलक चाहिए उसमें साथ में।
1: हाँ ठीक है, ढोलक की व्यवस्था कर लेंगे और पारंपरिक गीत और इसी पर एक सखी सहेली हम करेंगे। अब देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं कि उनको ऐसा वाला प्रोग्राम चाहिए या नहीं,
2: पसंद आएगा या नहीं।
1: जी
2: और है ना ममता जी, इन गीतों में हंसी मजाक, भावनाएं, रिश्तों की मिठास और बेटी की विदाई का दर्द भी दिखाई देता था।
1: बारिश के मौसम में झूले पड़ते थे, महिलाएं मिलकर सावन के गीत गाती थी और कोई जो पटना बोलते हैं पटोहा
2: जी,
1: तो उसको झूले को झुलाते थे, और इनमें प्रकृति प्रेम और मायके की यादों का सुंदर चित्रण भी मिलता था उन गीतों में।
2: जी और साथ ही घर में बच्चे के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, ये परिवार के सामूहिक खुशी का प्रतीक होते थे। और त्योहारों के गीत पे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, नवरात्रि और अन्य पर्वों पर भी अलग अलग क्षेत्रों की अपनी लोकगीत परंपराएं भी रही है।
1: स्कूलों में लोकगीत और लोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, बच्चों को स्थानीय भाषा और लोकगीतों से परिचित कराया जाता था, याद है कि नहीं?
2: बिल्कुल याद है।
1: और विवाह और त्योहारों में रिकॉर्डेड संगीत के साथ पारंपरिक गीतों को भी स्थान दिया जाता था।
2: और तो अगर इन गीतों को भी अभी भी अगर स्थान मिले तो कितना अच्छा होगा ममता जी।
1: बिल्कुल अच्छा होगा, ये रहा। भाई हमारा तो ये कहना है कि ये जो गीत कम सुनने को मिलते हैं लोरी की शक्ल में, श्रोता इन्हें साथ में गुनगुना सकते हैं।

0: भाई देखिए सुना लीजिए, हमारे श्रोताओं को तो ये लोरी पूरी याद है, अगर आपको याद नहीं तो आप भी याद कर लीजिए और हमें भी याद है। तो हमारे एक श्रोता ने पूरी लोरी लिख भेजी है।
1: अच्छा?
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। और जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, ये लोरी वहां से लेकर अपने बच्चे को आज सुना सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने पोते को, नाती को, जो भी घर में छोटा बच्चा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो सोते समय कोई न कोई लोरी, जैसे चंदा मामा दूर के लल्ला लल्ला लोरी, कोई गीत गाते हुए सुलाती थी। अगर मैं रुक गई तो कहते थे मम्मी गाओ ना, जब तक गहरी नींद न हो जाए मुझे गाना ही पड़ता था। पर अब वही बेटियों को लोरी गाने का टाइम नहीं है, बस एक ऑडियो लगाकर बगल में रख देती हैं। और कामकाजी लड़कियों को नौकरी से टाइम बेटाइम घर आना पड़ता है, घर के कामकाज, बच्चे लोरी गाने का टाइम ही नहीं।

0: बच्चों के लिए लोरी गाने का टाइम ही नहीं है। देश विदेश में रहने के कारण या दूसरे शहरों में रहने के कारण दादी नानी भी पास नहीं रहती हैं। भाई यहाँ हम ये कहेंगे कि अगर महिलाओं की नौकरी तो वो आजीविका के कारण करती है, मजबूरी है और करना भी चाहिए, तो लेकिन पिता है घर में तो पिता को सुनाना चाहिए।
1: हाँ।
0: दादा दादी है,
1: भाई सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है,
0: बिल्कुल जो घर में है उसे सुनाना चाहिए। और मान लीजिए कि दादी दादी को नानी को बहुत सारी लोरियां याद है, तो अब तो फोन का जमाना है, फोन पर वीडियो कॉल करके भी सुना सकते हैं।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि लोरियों से अपना बचपन और अपने बच्चों का बचपन याद आ गया, और साथ ही कहती थी कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले, आवा बबुआ के मुहुआ में घुटुक, ए चंदा मामा आ रे आओ। एक सखी ने लिखकर भेजी।
0: और जब घुटुक जिसपे दूध पिलाने के नाम पर माए बच्चे को करती है घुटुक, अपने बच्चे का नाम लेकर, तो कई बच्चे मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि नहीं घुटुक नहीं,
1: दूध पिलाएंगे,
0: घुटुक नहीं बोलो, बस बाकी लोरी सुनाओ, ये भी होता था।
1: एक साथी कहते कि हमारे यहाँ बेटा होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर गीत कहा जाता है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लोरियां विलुप्त हो गई हैं लेकिन पारंपरिक गीत तो अभी भी बरकरार हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो शादी ब्याह नामकरण कुआं पूजन वगैरह, उसमें आज भी बड़े बुजुर्गों के द्वारा पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जिनके बिना आयोजनों में आनंद नहीं आता। ये पारंपरिक गीत अपनी लोकल भाषाओं में गाए जाते हैं जिनको सुनना एक अलग ही एहसास कराया जाता है। भाई अभी तो जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत सारे रस्म होते हैं कई दिन, और उसमें छोटे छोटे रस्म की मंदिर जाती हैं महिलाएं,
1: कुआं पूजन,
0: फिर वो मिट्टी होती है तो मिट्टी पूजन करती हैं, वहां एक लोकगीत होता है, फिर वो एक मतलब सात महिलाएं एक बर्तन को पकड़ती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सिकहुली बोलते हैं या फिर भौरी बोलते हैं, तो वो उठाती हैं तो उस समय एक गाना गाया जाता है, फिर वहां से निकलती हैं तब सड़क पर जब चलती हैं तब एक गाना, फिर दरवाजे पर आती हैं तो
1: तब गाना,
0: बहुत सारे गाने हैं। लेकिन हाँ, इन परंपराओं को, इन गीतों को आने वाली पीढ़ी को बताना उन्हें
1: हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: जी। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, लोरी एक शांत मधुर और सौम्य गीत होता है जिसे माँ या अभिभावक अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए गाते हैं, पर आज आधुनिक जीवन शैली, एकल परिवार और डिजिटल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक लोरिया और लोकगीत विलुप्त होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन और टीवी पर सिर्फ लोरी मिलती है आत्मीयता और प्यार नहीं, नई पीढ़ी का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति से दूर होना भी तो इन मौखिक परंपराओं के लुप्त होने का एक मुख्य कारण है।
0: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि दुनिया बदली सो बदली, मगर ताज्जुब ये कि अब शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हो। माँ और बच्चे के रिश्ते में पालना और लोरी का अटूट संबंध रहा है। लोरी की दुनिया दरअसल सपनों की दुनिया है। माँ की लोरी में ऐसे हसीन और सुहाने वादे होते हैं कि माँ के चेहरे पर आते भाव से रीझकर हर बच्चे के चेहरे पर पहले मुस्कान और फिर आंखों में नींद आ जाती है, और नींद में सपने होते हैं, तब शायद सपनों में माँ भी होती है। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर कानों में आज भी मिठास घुल जाती है।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि लोरी बच्चे के लिए भाषा का पहला परिचय है और पहला संगीत हुआ करती थी। माँ की थपकियों की लय और उसकी धीमी आवाज में बहता वात्सल्य बच्चे को न केवल गहरी नींद में ले जाता था बल्कि उसे मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव भी कराता था। लोरी माँ और शिशु के बीच एक अनूठा संवाद थी जिसमें लोक कहानियां, प्रकृति और पारिवारिक रिश्ते ताने बाने की तरह बुने होते थे।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आपके विचार से लगता है कि ये तो मेरी ही बात है। समय मिलने पर ही मैं अपने शिशु से बातें करती थी। सुलाते समय लोरियां तो जरूर, स्वरचित लोरियां भी बेटा सुनता है। रूप कथा कहानी सुनकर वो बड़ा हुआ है, मेरी स्वरचित कहानी भी सुना है, इससे बच्चों में कल्पनाशीलता तो बढ़ती ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप एक इसका एक तरीका और है कि आप कहानी सुनाने लगती हैं तो दो चार लाइन सुनाइए और फिर पूछिए बच्चे से फिर क्या हुआ,
1: तो वो भी उसमें तो शामिल होंगे उसमें।
0: बिल्कुल, वो लाइन जोड़ेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और वो जब दहाड़ता था तो बहुत सारे वहाँ जानवर डर के मारे दुबक जाते, फिर क्या हुआ, तो बच्चे वहाँ पर बताएंगे आपको, इससे उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार होता है।
1: एक साथी ने कहा, चंदा मामा आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, भोजपुरी की सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोरी गीतों में से एक है। ये गाना बच्चों को सुला रहे और उनका मन बहलाने के लिए पीढ़ियों से गाया जाता है। 50 साल पहले जिनका बचपन बीता होगा शायद ही कोई बच्चा इस लोरी के बिना सोया होगा, या माँ अपनी माँ, दादी माँ, बुआ नानी, मौसी की गोद में खेल

0: ये वाली लोरी कितने श्रोताओं को याद है जरा बताइए, अगर याद है तो पूरा लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, क्योंकि ये तो सुरक्षित रहता है, जब भी श्रोता चाहेंगे आपके इस कमेंट को पढ़ सकते हैं। और देखिए ना सोनाली जी, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं इसके लोरी के लिए
1: जी।
0: कि एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे जहाँ बेटा होने पर मंगल गीत गाए जाते हैं उन्हें हमारे यहाँ सोहर कहा जाता है, बेटा नहीं बल्कि बेटा बेटी क्योंकि बेटी के पैदा होने पर भी अब सोहर गाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ढोलक वाला प्रोग्राम तो अवश्य पसंद आएगा। देखिए आ गई टिप्पणी, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ बिल्कुल तैयार हूँ।
0: तो अगली बार ढोलक लेके
1: ढोलक लेके बैठेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहा में घुटुक। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हम उन दिनों को याद कर रहे हैं जब हम ये गाया करते थे और सुना करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटा हो या बेटी हो सोहर खिलौना सभी के जन्मोत्सव छठी बरही में गाया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी बहुत माँ को देखा है बच्चों को लोरियां सुनाती हैं और आजकल तो अलेक्सा भी आ गई है, तो मेरा पोता छोटा था तो अलेक्सा पर हम लोग लोरी लगा देते थे और सुनता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती लोरी है जो हमारे भाभी जी गाकर अपने बेटे को सुनाती थी, भाईलो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी भाईलो मारो गयो हसी। ये लोरी सुनाती,
1: यानी कितनी मिठास है ना, जो भी भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें एक अलग ही मिठास होती है, फिर वो हमें भले ही समझ ना आए पर उसकी मिठास हमारे दिल तक पहुंच जाती है।
0: सोनाली जी अब देखिए आपको ढोलक की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है ढोलक संगत के साथ सभी सखियों सहेलियों के गाने के प्रोग्राम कीजिए ना, सृजन भारती में भी ऐसा प्रोग्राम हो
1: वाह
0: आनंद आ जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो टिप्पणियां आ रही हैं
1: जी
0: उसे पढ़ दिया।
1: अब जैसे कहा एक श्रोता ने कहा कि हमारे बेटे के जन्म होने पर वो जो खास
0: सोहर
1: गाया जाता है, तो वे बेटी के जन्म पर भी गाना चाहिए, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि मेरे तो तीन बेटियां ही है, किसी भी भेदभाव की जरूरत ही नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से बेटियों को पालने की कोशिश की थी, अच्छे से अच्छे भोजन, एजुकेशन, साफ सफाई, अच्छा पहनना, ओढ़ा, सभी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, जिसके कारण आज बड़ी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और एक कत्थक डांस स्कूल भी चला रही है और दूसरी बर्लिन में सीनियर साइंटिस्ट है, दूसरे के बेटों से बेहतर है, वो भी वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, क्या बात है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि ये पुरानी मान्यता गलत साबित हो चुकी है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, असलियत में बेटियां विवाह के बाद भी माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमलों के कारण काफी सुधार आया है, लोग बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं।
1: एक हमारे साथी ने कहा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग क्यों हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती है, चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार, फिर खुद से पूछती हूँ कि जब प्यार दोनों से बराबर तो सोच में फर्क क्यों, शायद ये भेदभाव जानबूझकर नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही सोच का असर है, अब कोशिश है कुछ दोनों को सिर्फ बराबर प्यार नहीं बराबर भरोसा भी दे सकूं, अब बेटियां इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वह एरोप्लेन उड़ाने के साथ साथ देश के लिए बंदूक लेकर भी खड़ी है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि हमने यानी कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर कॉलेज स्कूल में शिक्षा दिलाई है, सबको उनकी रुचि के अनुसार हायर एजुकेशन कराया और बेटे अभी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेटियां भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए बेटियों को पहले आत्मनिर्भर होने का पूरा मौका दिया है।
1: क्या बात है। एक सखी ने लिखा है मेरे ससुराल में बेटियां बहुत कम है, मेरी बेटियों के होने पर बहुत खुशियां मनाई गई, मेरे सास ससुर नंद बहुत खुश हुए थे, कभी हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि इनके तो बेटियां ही है। कितनी अच्छी उदाहरण है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कभी कभी मुझे खुद महसूस होता है कि बेटे और बेटी को लेकर मेरी सोच अलग हो जाती है, बेटे के लिए मन थोड़ा निश्चिंत रहता है लेकिन बेटी की बात आते ही कई चिंताएं घेर लेती हैं। चिंता का कारण न्यूज़पेपर में आते समाचार हैं। फिर खुद से पूछती हूँ, जब प्यार दोनों से बराबर है तो सोच में फर्क क्यों?
1: एक साथी ने लिखा है कि बेटे बेटी में भेदभाव ये क्यों होगा, जब लड़का लड़की सब बराबर है तो आजकल सभी क्षेत्र में दोनों बराबरी से अपनी भागीदारी देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या ढूंढ लेते हैं बेटे और बेटी में जो हमें भेदभाव सिखाए। मैं तो बेटा और बेटी दोनों की माँ हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं किसी भी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं होता। जितनी बेटी लाडली है उतना बेटा भी है, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर बेटी बेटे में भेदभाव की बात करें तो आज के युग में भेदभाव रखने का प्रमाण कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की बेटियां बेटों के समकक्ष हो गई हैं, जो नौकरी करते हुए पूरा घर पूरा परिवार संभाल रही है, इसलिए उसे नारायणी भी कहते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी, ये भेदभाव पुराने जमाने में जरूर था और माना जाता था कि केवल बेटा ही वंश आगे बढ़ा सकता है, जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। असल में पुराने जमाने में भी बेटियों को बाकायदा सक्षम बनाया जाता था। बहुत सारी महिलाएं वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज किया गया, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन भूल सकता है। तो ये समय है, हाँ ये जरूर है कि अब जो समय है इसमें बेटियों को भी बराबरी का मौका मिल रहा है। तो जो लोग जिन घरों में अभी भी भेदभाव है, मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से चर्चा से वो भेदभाव करना छोड़ देंगे।
1: और अब गीत सुन ले,
0: सुनते हैं ये गाना।
2: कह दिए हो शुमया।

0: भाई हमारे भी अब जाने का वक्त हो रहा है, कुछ कहना है?
1: एक सखी ने लिखा है कि लोरी और पारंपरिक गीत के विषय ने सखी सहेली में चार चांद लगा दिए।
0: क्या बात है, आपकी टिप्पणियों ने चार चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी हाँ, सही, आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम? हाँ, तो सुनते
1: है मिस्त्री के साथ में बांधगा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, सही, देखिए हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्वधर्म संभाव बोल के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई बच्चे

0: जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
0: जी हाँ
1: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश यहाँ ये सच्चे प्यार, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम दीदी।
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग 1 साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत

0: अच्छा लगता, क्या करना है दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
1: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
0: दीदी आपकी आवाज जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
1: आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
0: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
1: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
0: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे, हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
1: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
0: देखो बड़ा हो या छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
0: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
1: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा। अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो
1: हाँ
0: बताइए
1: जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल हैं, तेरी याद आती है। मैम जी तो लाइने हैं, बोल दें, इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का छेड़गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गाँव, इसमें खंडगाँव गाँव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: अच्छी, सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वाद नहीं, टंटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में हो गया कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फन करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर टांडा बस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण में सभी पहुँचते है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही। सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
1: और इसीलिए जो महिला का तो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
0: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना? बहुत अच्छा,
1: पूरा जानकारी मिलती है ना हर आदमी की। हर कहाँ से फोन लगा, कृष्ण मैडम ने हमारी जो बहन रहते बहन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे हैं क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना?
1: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो विविध भारती देश में कहाँ भी जाओ।
0: चलिए, आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें?
1: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई।
0: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ा कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूँ चना लहसुन प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोडा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ चलिए, गाना बताइए कौन सा सुनेंगे?
1: बटवारा फिल्म का है दीदी, अरे वाह तेरे ढोला नैन मेरे जागे
0: जागे रे जागे। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कह रही हूँ।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार
1: जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी
1: जी
0: रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी
1: जी
0: परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे,
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: और होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं,
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं
1: हाँ
0: अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं
0: अरे
1: पत्थर पे। हाँ
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे,
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो हाथ
1: हाँ
0: से करते हैं?
1: हाँ हाँ हाथी वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल, फिर
1: मेहनत
0: भी
1: करनी पड़ती है।

0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
1: हाँ हाँ सही बात सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ। सारे प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह बहुत खूब, गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदल बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: बाइक टू व्हीलर गाड़ी जो है हाँ? सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा,
1: पसंद करते हैं।
0: पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे यार, ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते।

0: जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने
1: जी
0: स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
2: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
0: हाँ,
2: तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही है आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
2: ये मेरी दुकान है ना, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऑटो के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर की जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
2: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए, हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियां तीन गाड़ियां चार गाड़ियां खड़ी रह जाती है आराम से, उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं, झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
2: उदयपुर में फिल्माया गया गाना है राजपूत का,
0: कौन सा?
2: मेरे संग संग आया यादों का मिला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
2: उदयपुर राजस्थान, किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कह रही हूँ।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना व्यस्त तो आज लगा है, तो बड़ा मुश्किल से लगा था, चलो अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतनी सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते हैं बिल्कुल।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राज और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती। तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं भूले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीट भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे 50 साल से, बचपन से स्कूल में चौथी में से था जब तक, तो आज तक लेके हम विविध भारती बचपन से सुन के बड़े होते आएले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं, एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में को जो गाना देने का राज और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैडम। सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा। दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा, हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये शिरकत की थी?
1: जी, सभी सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ। दीदी, मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा ही रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं, और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 0222867088, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है.
2: विविध भारती मुंबई से अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे. एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं. शाम के 5 बजने को हैं. अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी.

0: युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज 8 अक्टूबर है और आज हमारा देश भारतीय वायुसेना दिवस मना रहा है। वायुसेना में कैरियर और युवाओं का देश प्रेम कैसा होना चाहिए? भारत की सुरक्षा में आपको मालूम है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण योगदान है। हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे वायु योद्धाओं के साहस, अनुशासन, त्याग और देशभक्ति को सम्मान देने का अवसर है। भारतीय वायुसेना आकाश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में भी देशवासियों की और देश की सहायता करती है। आज के युवाओं के कैरियर में भारतीय वायुसेना का एक गौरवपूर्ण अवसर है। इसमें आप पायलट, तकनीकी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ग्राउंड ड्यूटी और अनेक सेवा के क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वायुसेना में प्रवेश के लिए युवाओं को अपनी शिक्षा के साथ साथ शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेहनत, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और लगन के माध्यम से युवा इस क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। देश प्रेम केवल देश के लिए नारे लगाने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। सच्चा देश प्रेम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से निभाना, देश के कानूनों का सम्मान करना और समाज सेवा करने में तत्परता दिखाना होता है। वायुसेना के जवान अपने साहस और समर्पण से युवाओं के सामने देश सेवा की एक प्रेरणा बन सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। आज भारत के युवाओं में प्रतिभा है, ऊर्जा है, नई सोच है, इसकी कमी नहीं है। यदि इन गुणों का उपयोग राष्ट्र निर्माण और देश सेवा में कर लें तो भारत और अधिक मजबूत बन सकता है, हमारा देश और अधिक मजबूत बन सकता है। हमें अपने वायु योद्धाओं से अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता सिखाती है। भारतीय वायुसेना हमें उन वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है जो देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी प्रकार का संकट इस देश पर क्यों ना आ जाए, तो युवा दोस्तों, वायुसेना केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा और गौरव है। हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए देश सेवा के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावनाओं के साथ उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और हमें देश की सेनाओं के साथ जुड़ करके हमें अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अच्छी पढ़ाई करें, मेहनत करें, फिटनेस बनाएं और देश का नाम ऊंचा करें।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
0: युवाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपका अपना साथी संजय पाराशर। आज गुरुवार है और आज के दिन होता है आपकी पसंद। ईमेल पर आधारित आपकी पसंद कार्यक्रम में पहला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रीतेश संगई और उनके परिवार वालों का। आप सभी सुनना चाहते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आप सुनना चाहते हैं गीता दत्त के स्वर में हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं सात रंग के सपने फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है उमेर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर। आकार राइट बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेंद्र गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर और परी। और ये एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू का। आप सभी सुनना चाहते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
3: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
3: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
2: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
4: साथियों, आप भी कोई गीत अपने मनपसंद का यदि सुनना चाहते हैं तो youthexpress@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है आपकी पसंद कार्यक्रम के तहत। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, चित्रेखा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं कुदरत फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: युवा साथियों, हर गुरुवार को युवाणी कार्यक्रम में आपकी पसंद कार्यक्रम का प्रसारण होता है, और यदि आप भी अपनी मनपसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें 5 बजे से पहले पहले youthexpress@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम जो ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, यह है रींगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं अभिजीत और अलका याग्निक का गाया चलते चलते फिल्म का ये गीत, तो हम भी चलते चलते ये गीत आपको सुना देते हैं।

युवा साथियों भी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार नागौर। नमस्कार नागौर कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नागौर में हम आपको नागौर जिले की किसी न किसी एक सांस्कृतिक और धार्मिक जगह का भ्रमण करवाते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं मुंडियार का गणेश मंदिर की। नमस्कार साथियों, आपका अपना साथी संजय पाराशर आपको बहुत बहुत नमस्कार करता है। साथ ही आपको जानकारी दे रहा है मुंडियार का गणेश मंदिर की। राजस्थान अपनी समृद्धि संस्कृति प्राचीन परंपराओं और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित है जो स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र है। इन्हीं धार्मिक स्थलों में से मुंडियार का गणेश मंदिर भी विशेष महत्व रखता है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नागौर के पास में खरनाल तेजाजी महाराज का मंदिर है और उसी के पास में एक गाँव है मुंडियार। यहाँ गणेश मंदिर में मेला भरता है। जब खरनाल में तेजाजी का मेला भरता उससे एक दिन पहले यहाँ पर भी मेला लगता है और नागौर और आसपास के गाँव के लोग पैदल भगवान गणेश के दर्शन करने जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि गणेश हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बुद्धि विवेक समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी वे अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता है। इसी कारण गणेश मंदिरों में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। मुंडियार का गणेश मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करके अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करते हैं। मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं है बल्कि लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाला भी केंद्र है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। उन्हें भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अनेक संदेश देता है। इनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इनके बड़े कान सुनने की सीख देते हैं और छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। इनका वाहन मूषक माना जाता है। मुंडियार के गणेश मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। श्रद्धालु मंदिर में भगवान गणेश को मोदक रूपी लड्डू दुर्वा और पुष्प अर्पित करते हैं।

साथियों, मुंडियार का गणेश मंदिर स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और वातावरण बड़ा ही भक्तिमय हो जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। धार्मिक अवसरों पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सामूहिक रूप से पूजा और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मुंडियार गणेश जी के मंदिर में लोग अपनी जो मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद वहाँ अच्छे अच्छे पकवानों से भगवान को भोग भी लगवाते हैं। मंदिर से जुड़ी परंपराएं स्थानीय लोगों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ती है। यहाँ आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता का एक मजबूत प्रदर्शन देखने को मिलता है। राजस्थान की लोक संस्कृति में लोकगीत, लोक भजन और धार्मिक कथाओं का विशेष महत्व है। गणेश मंदिर में धार्मिक अवसरों पर भजन कीर्तन का आयोजन होता है और इन आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कृति की जानकारी मिलती है। आप जब भी मुंडियार गणेश जी के मंदिर जाओ तो देखना, आजकल मंदिर भी भव्य और दिव्य बन चुका है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार नागौर में मुंडियाड़ के गणेश जी के मंदिर के बारे में जानकारी और मैं हूं आपका अपना दोस्त संजय पाराशर। साथियों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके और विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। मुंडियाड़ के गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर को सजाया जाता है और भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण मंदिर का वातावरण बड़ा ही रोमांचक और उत्सवमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है, साथ ही बुद्धि, विनम्रता, धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व जागृत करने की विशेष बुद्धि देती है। मुंडियाड़ का गणेश मंदिर अपनी धार्मिक आस्था और स्थानीय महत्व के कारण विशेष माना जाता है। मंदिर में भगवान गणेश की पारंपरिक

पारंपरिक पूजा तरीके से होती है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपने भगवान गणेश से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और कई कई फूल मालाएं और गुलाब भी चढ़ाते हैं।

साथियों, जब भी श्रद्धालु मुंजाड़ के गणेश मंदिर जाते हैं और अपनी मन्नत के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उनको उनका वाहक मूसक राज याद आता है। मूसक राज के कान में जाकर के वो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं और उनका काम सहज रूप से भगवान गणेश पूरा करते हैं। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मंदिर देश विदेश से आने वाले आकर्षक पर्यटकों को आकर्षित करता है और मुंजाड़ का गणेश मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु आसपास के क्षेत्र की संस्कृति, रहन सहन, खान पान और परंपराओं से परिचित होते हैं। यदि ऐसी धार्मिक स्थलों का उचित प्रसार किया जाए और आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए तो स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं। दुकानदार, छोटे व्यवसायी, परिवहन व्यवस्थाएं और अन्य सेवाएं लोगों के लिए लाभान्वित का हो सकती है। इस प्रकार मंदिर क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान हम दे सकते हैं।

कार्यक्रम है नमस्कार नागौर। और साथियों, नमस्कार नागौर में हम नागौर की प्रसिद्ध धरोहरें, फसलें, धार्मिक स्थानों के बारे में आपको हर गुरुवार को शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच जानकारी देते हैं। अगले गुरुवार को हम नागौर की प्रसिद्ध फसल अश्वगंधा के बारे में जानकारी देंगे और हम बात कर रहे हैं मुंडियार के प्रसिद्ध गणपति मंदिर यानी गणेश मंदिर की। यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार कैसे प्राप्त करें, जब हम सभी वहाँ जाएंगे, गजानन जी के दर्शन करेंगे तो उन वहाँ के गांव के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधरेगी, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। हमारे प्राचीन मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए इनका संरक्षण करना चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर के पास जाए तो वहाँ किसी भी प्रकार का कचरा न करें, स्वच्छता रखें, सावधानी से चलें। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वस्तुओं को सुरक्षित रखना और मंदिर की परंपराओं का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। हमें देख करके हमारी पीढ़ियाँ सीखेगी, तो श्रद्धालुओं को मंदिर की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना होगा। मंदिर परिसर में किसी प्रकार का कूड़ा न फेंके, धार्मिक स्थल की गरिमा को बनाए रखें। स्थानीय प्रशासन और समाज मिलकर के मंदिर की सुविधाओं का विकास कर सकते हैं। तो साथियों, जब भी आप खरनाल जाएं, तेजा जी के दर्शन करें, मुंडियार जाएं तो वहां गजानन भगवान के दर्शन करें और अपनी आस्था का प्रतिरूप वहां समर्पित करें। अपनी जो मन्नतें हैं उसके बारे में मांगे, आपकी मन्नतें अवश्य भगवान गणेश और तेजा जी महाराज पूरी करेंगे। नागौर के क्षेत्र की जानकारियों से भरा है हमारा नमस्कार नागौर।

अभी आप नमस्कार नागौर कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषध कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उदित नारायण का गाया राजा भैया फिल्म से। गीत की रचना मान सिंह दीप की है और संगीत दिया है सुरेंद्र सेठी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का गाया जवाब हम देंगे फिल्म से सुनिए। गीत समीर ने लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया दयावान फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गौरी शंकर के गाए कुछ लोक भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली लोक प्रस्तुति।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

गौरी शंकर के गाए कुछ लोक भजन अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 होने को है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। 10 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। इससे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। इसके 5.5 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पिछले एक दशक में देश की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से दुनिया भर के टेक दिग्गज, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और निवेशक एक मंच पर आए हैं। इस 4 दिन के सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की प्रगति को दिखाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर सहित 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है और गांवों, चौपालों से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यालयों तक दावेदारों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया को लेकर संबंधित जिलों में कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई है। पहले चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को पंच और सरपंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को देखते हुए पंचायत समिति स्तर पर 10 अक्टूबर को प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके माध्यम से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाएगी। श्री सिंह आज जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग में आयोजित मतदाता जागरूकता के संबंध में वीसी के जरिए बैठक कर रहे थे। उन्होंने पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया था। राज्य में दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। इसके साथ ही देश में एक राष्ट्र एक संविधान एक निशान एक प्रधान और एक विधान का संकल्प साकार हुआ। एक रिपोर्ट।
2: अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और स्वायत्तता समाप्त हो गई और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। पहले वहां अलग संविधान और अलग झंडा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह वैध करार दिया, साथ ही ये कहते हुए मुहर लगाई कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को जमीन खरीदने और रोजगार पाने के समान अधिकार मिल गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगी है, वहीं पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान से युवा शक्ति को जोड़ा जाएगा। जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों के माध्यम से टीबी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में जोश टीमों के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये टीमें टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और इलाज कराने में संदेश देंगी, साथ ही टीबी से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। पहले चरण में 11 राज्यों और 55 जिलों में जोश टीमें शुरू की जा रही हैं। इनमें राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, बारां, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर जिले भी शामिल हैं। इनमें जोश टीम का पायलट शुभारंभ किया गया। इस टीम में माय भारत वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य युवाओं को शामिल किया गया है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी के लिए सुलभ और किफायती नेत्र देखभाल के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम लव योर आईज रखी गई है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर धारा महिंद्रा ने बताया कि ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी सहित कई तरह की बीमारियां शुरुआती दौर में बिना किसी लक्षण के ही बढ़ती हैं। ऐसे में नियमित अंतराल पर आंखों की जांच जरूरी है।
3: छोटे बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों में कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है, जिसके लिए चेकअप कराने के लिए अगर हम उनको सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो उनकी आंख के विजन का डेवलपमेंट है वो सही हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम सही समय पे कैटरेक्ट का तो पूर्णतया समाधान हो जाता है लेंस लगाने के बाद और ऑपरेशन के बाद में। ग्लूकोमा के मरीजों में समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो ग्लूकोमा से होने वाली जो भी दृष्टि में कमी होती है उसको हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
0: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया। गोवा में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। नाना पाटेकर उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत सहित कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी।
4: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं।
0: नाना पाटेकर के निधन की खबर से उनके प्रशंसकों और सिने प्रेमियों में शोक छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि उनका सशक्त अभिनय हमेशा याद किया जाता रहेगा। राज्य के तापमान में इन दिनों उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अधिकतर स्थानों पर दिन के समय गर्मी का असर है, वहीं उदयपुर और सिरोही सहित दक्षिणी जिलों में रात का तापमान में गिरावट आई है। यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज होने से सुबह शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले सप्ताह उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से 10 और 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए युवा शक्ति की जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों का आगाज। पहले चरण में राजस्थान के 7 जिले शामिल। और राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी, 10 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दादीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, प्रशासनिक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम हुए। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले के 315 शहरी वार्डो में सदस्यों के लिए दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना पूरी हुई। अजमेर नगर निगम की 80 वार्डों के परिणाम आने के बाद महापौर पद के लिए चुनाव हुआ। भाजपा की अनामिका शर्मा 43 मत प्राप्त कर महापौर निर्वाचित हुई। कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 मत मिले। पिछले दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हुई। जिले की 10 पंचायत समितियों की 261 ग्राम पंचायतों में दो चरणों में चुनाव होंगे। इसके लिए 993 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 23 अक्टूबर को सरवाड़, केकड़ी, सावर, पिसांगन, श्रीनगर और अजमेर ग्रामीण के संबंधित क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को अजमेर ग्रामीण के शेष क्षेत्र के साथ ही बड़लिया, सिलोरा, अराई और भिनाई में मतदान होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा 20 सितंबर को हुई। राज्य के 11 जिलों में 666 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अजमेर में भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं पिछले दिनों आरपीएससी की एक टीम ने गुजरात लोक सेवा

0: आयोग का अध्ययन दौरा किया। टीम ने वहां साक्षात्कार प्रक्रिया और अभ्यर्थियों को अंक देने की व्यवस्था का अध्ययन किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में 17 सितंबर से विभिन्न गतिविधियां शुरू हुई। 19 से 25 सितंबर तक सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में पेंशन, राजस्व, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा और टीकाकरण शिविर भी आयोजित हुए। अजमेर रेल मंडल के सोजत रोड रेलवे स्टेशन से पहली बार चूना पत्थर का व्यवसायिक लदान शुरू हुआ। 58 वैगन में चूना पत्थर बोकारो स्टील प्लांट के लिए भेजा गया। ये मालगाड़ी करीब 1,502 किलोमीटर की दूरी तय कर बोकारो पहुंची। इससे रेल मंडल को एक चक्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल भाड़ा मिला। रेल मंडल में 14 से 30 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा भी मनाया गया। निबंध, प्रश्नोत्तरी, टिप्पण, प्रारूप लेखन, वाक और कविता पाठ सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। करीब 165 रेल कर्मियों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। समापन समारोह में 90 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता गतिविधियां भी हुई। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े अवसरों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व ओजोन दिवस पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। इसमें 63 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं आयुर्वेद दिवस पर JLN अस्पताल परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में परामर्श शिविर लगाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विद्यार्थियों को बिजली बचत और बिजली सुरक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपने स्कूलों में बिजली के उपकरणों का निरीक्षण कर ऊर्जा बचत के उपायों की जानकारी ली। उन्हें बिजली सुरक्षा, वायरिंग और अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में बताया गया। धार्मिक आयोजनों के तहत श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियां सजाई गई, भजन कीर्तन हुए। वहीं गणेश चतुर्थी पर घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बाबा रामदेव जयंती के अवसर पर रामदेवरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में सेवा शिविर लगाए गए। इस बीच श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही पुष्कर के घाटों पर श्रद्धालु पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम रे जरिए 25 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला। पंचायती राज संस्थाओं रा चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी भेवनसा गई, पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमा री शुरुआत। पहला दौर माए प्रदेश रा 7 जिला शामिल। और राज्य रा तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 10 अक्टूबर नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेवन री संभावना। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी सेवाओं रो फायदो जनता ताई पोगावन माए डिजिटल जुड़ाव रो खास काम है। वे आज नई दिल्ली माई स्वरूफी इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा 10वां संस्करण रा उद्घाटन जलसा माई बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि डिजिटल जुड़ाव उन जनता ने बनाई लिखाई और स्वास्थ्य रा हल्का माई सुविधा मिलिया है। वे कहो कि आज 5G कनेक्टिविटी देश रा कोना कोना माई पूग की है। प्रधानमंत्री कहो कि सरकार करीब 25 करोड़ विद्यार्थियों ने भनाई लिखाई रा न्यारा न्यारा डिजिटल और ऑनलाइन मंचाऊं जोड़बारी कोशिश कर रही है। श्री मोदी दीक्षा प्लेटफॉर्म रो जिक्र करता थका डिजिटल शिक्षा रा बढ़ता महत्व रे बारा माय जानकारी दीनी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान July 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल

0: डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: ई मौके केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहो के लारला 10 साल माए देश में टेलीकॉम और डिजिटल हल्का माए बेहतरीन काम फियो है। वह कहो के 4 दिन री इंडिया मोबाइल कांग्रेस रा आयोजन दुनिया भर रा तकनीक रा जानकार नीतियां बनावन वाला कारोबारी जानकार स्टार्टअप्स और निवेश करण वाला एक मंच मथे आया है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फे वणसा गई। आज नाम पाना दाखिल करण रो काम शुरू फे गयो। अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर समेत 16 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव रो काम आज शुरू फे गयो। उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक संबंधित चुनाव अधिकारी सामी नाम पाना दाखिल कर सके है। दाखिल करी जा नाम पाना री 14 अक्टूबर न जांच करी जावेला, जदकै 15 अक्टूबर न नाम पाछा लिया जा सकेला। नाम पाछा लेवन रो भगत पूरो हुए ताई चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जावेला। ई विच नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू हुए वनसा गई। गांव चौपाल उनलेर सियासी पार्टियां रा दफ्तरां ताई दावेदारां री हलचल बधवा लागी है। पंचायत चुनाव रा पहला दौर माए पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू हुए वनसा गई। संबंधित जिला रा कलेक्ट्रेट परिसर माए हिफाजत रा जरूरी इंतजाम करी जिया है और नाम पाना दाखिल करन री प्रक्रिया री जानकारी देवन सारू हेल्प डेस्क लगाईची है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य रा चुनाव रा पहला दौर माए 22 अक्टूबर न वोट पड़ेला, जबकि 24 अक्टूबर न पंच और सरपंचा नो चुनाव भेला। निपक्ष चुनाव शांति और साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस और प्रशासन री ओरू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। ई बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव न ध्यान रखता थका पंचायत समिति लेवल मत है 10 अक्टूबर न प्रत्याशी प्रबोधन कार्यक्रम राख्यो जावेला। इन जरिए चुनाव लड़बारी मर्जी राखण वाला उम्मीदवारा ने पर्चा दाखिल करण जुड़ी जानकारी दी जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज मारा दफ्तरों वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए राखी जी मतदाता जागरूकताओं जुड़ी मीटिंग माए बोल रहा है। वह पंचायत चुनाव माए बत्ताऊं बत्ता मतदाताओं री भागीदारी तय करण सारू मोटा पैमाना माथे मतदाता जागरूकताओं जुड़िया कार्यक्रम राखण रा हुक्म दीना। पंचायत चुनाव रा तेत वोट पड़वारा दिन संबंधित हल्का माए छुट्टी रहवेला। वित्त विभाग रा संयुक्त शासन सचिव री ओरू इवारा माए आज अधिसूचना जारी करी जी। केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 ने करी जिया ऐतिहासिक फैसला रा तेत जम्मू कश्मीर संविधान रा अनुच्छेद 370 रा प्रावधान निरस्त करती नहा। इन पाछे जम्मू कश्मीर राज्य ने तोड़ और केंद्र रा राज वाला दो प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया चिया। इस आगे देश में एक राष्ट्र एक संविधान एक निशान एक प्रधान और एक विधान रो संकल्प साचो फियो। पेश है एक रपट।
2: अनुच्छेद 370 और 35 ए के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और स्वायत्तता समाप्त हो गई और वहां भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। पहले वहां अलग संविधान और अलग झंडा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 को अपने फैसले में केंद्र सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह वैध करार दिया, साथ ही ये कहते हुए मोहर लगाई कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को जमीन खरीदने और रोजगार पाने के समान अधिकार मिल गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से जहां आतंकवाद और अलगाववाद पर लगाम लगी है, वहीं पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास से समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। न्यूज डेस्क से सालिहा गाजी।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश में टीबी मुक्त भारत अभियान रा तेत जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमों मोटियाना न जोड़र टीबी रे खिलाफ जनता माय जाग जगाई जावेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली माय जोश टीमा री शुरुआत रे मौके आ जानकारी दीनी। वे बतायो के ए टीमा टीबी रा लखण इनो बचाव और टेम सर जांच करावन और टीबियों जुड़ी गलत फहमियां आगे करण रे बारा माय जानकारियां देवेला। इरा पहला दौर माय 11 राज्यां और 55 जिला माय जोश टीमा शुरू करी जा रही है। आमाय प्रदेश रा अलवर, बारा, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर जिलाई शामिल है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। आँखियां रा स्वास्थ्य उन जुड़ी जाग जगावन और सगला सारू आँखियां री आसान और सस्ती सार संभाल बाबत ओ दिन मनायो जावे है। विश्व दृष्टि दिवस रो इन साल रो मुद्दो लव योर आईज राखी चियो है। ई मौके जयपुर रा SMS अस्पताल री आँखियां री डॉक्टर धीरा महिंद्रा बतायो के काला पानी समेत कई भांत री बीमारियां रा शुरुआती दौर माय कोई लक्षण नजर नहीं आवे है। वह कहो कि टेम टेम पर आँखियां री जांच जरूरी है।
3: छोटे बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की आंखों में कई बार चश्मे का नंबर आ जाता है, जिसके लिए चेकअप कराने के लिए अगर हम उनको सही समय पर डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो उनकी आंख के विजन का डेवलपमेंट है वो सही हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर हम सही समय पे कैटरेक्ट का तो पूर्णतः समाधान हो जाता है लेंस लगाने के बाद और ऑपरेशन के बाद में। ग्लूकोमा के मरीजों में समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो ग्लूकोमा से होने वाली जो भी दृष्टि में कमी होती है उसको हम रोक सकते हैं काफी हद तक।
1: बॉलीवुड रा नामी एक्टर नाना पाटेकर देवलोक वे क्या है। 75 साल रा नाना पाटेकर गोवा मायवारा रहवास मत है आज समारे आखिरी सांस लीनी। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में मायवारा काम छाप छोड़ी। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नवाजी जिया नाना पाटेकर, परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत समेत के यादगार फिल्मा माए वारा अभिनय रे अमिट छाप छोड़ी।
4: मैं दिलों में रहता हूँ, उम्मीदों में बसता हूँ, सपनों में जीता हूँ और गम पीता हूँ। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है तो मैं आता हूँ और बरस जाता हूँ।
1: नाना पाटेकर न श्रद्धा भाव सागर याद करता था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि नाना पाटेकर वारा अभिनय जनता रो दिल जीतियो।
0: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नाना पाटेकर रदेवलोक वेवन परा शोक जतायो है। रब मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी हल्का माय 10 और 11 अक्टूबर ने बादलां री गाज सागे जोरदार बायरो बाजन और कठे कठे हल्क्यों मझला दर्जा री बिरखा रा आसार है। आ दिना बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आरएसआर रा हल्का माय एड़ो ही मौसम रेवन री संभावना है। 13 और 14 अक्टूबर ने उत्तराद आतुणी राजस्थान और आरएसआर रा जिला माय कठे कठे हल्की बारिश रा आसार है। दूजी कानी जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग रा घनखर हल्का माय मौसम सूखो रेवन री संभावना है।
5: तो अब भी वही दौर चल रहा है जब विंटर आगे आने वाले समय में आने को तैयार है। तो फिलहाल तापमान कंडीशन सामान्य से ऊपर चल रही है, ड्राई वेदर कंडीशंस हैं। आने वाले दिनों में अब चूंकि मानसून चला गया है तो अब पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे सक्रिय होंगे तो अपने राजस्थान में इवन जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ मौसम में बदलाव होगा। हालांकि जयपुर और आसपास में आगामी दिनों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 10 से 14 अक्टूबर के बीच में एक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर होगा, बादलों की थोड़ी आवाजाही देखने को मिलेगी।
1: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के जरिए 25

0: 30 करोड़ विद्यार्थियों ने जोड़ेला पंचायती राज संस्था वाला चुनाव रा पहला दौर री लोक सूचना जारी फेवन सा गई पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू थियो। टीबी मुक्त भारत अभियान सारू जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ जोश टीमारी शुरुआत पहला दौर माए प्रदेश रा 7 जिला शामिल और राज्य रा तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर जारी 10 अक्टूबर नुवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय भेवन री संभावना ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार
1: FM इंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम।
2: किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। राजू जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
7: राम राम सा। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ना, राम राम सा
6: जी। आज गुरु जी एक फोन इन प्रोग्राम होगा जिसमें किसान बहन भाई आपकी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्टूडियो में जो विशेषज्ञ पधारे हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो उनके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान उनका हल पा सकते हैं। स्टूडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज विशेषज्ञ पधार चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हेमराज बसवाल, आप उपनिदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय जयपुर। कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। नमस्कार जी। और जैसे कि राजू जी, हमारे स्टूडियो की 4 फोन लाइनें हैं जो कि हम श्रोताओं के लिए रखते हैं, जिसपे वो फोन कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ, 2200600, 2200700, 2200800, 2366477, ये 4 फोन लाइनें हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आप मोबाइल से फोन करें तो 0141 जो जयपुर का स्टूडियो कोड है वो जरूर से लगा लें। और हमेशा की तरह यही कहना चाहेंगे कि जब भी फोन करें तो थोड़ा सा रेडियो से दूरी बना के बात करें, ताकि आप जो भी पूछें, आपका जो भी सवाल हो वो स्पष्ट तौर से सुनाई दे, विशेषज्ञ सुन पाएं, समझ पाएं और फिर आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएं, प्रश्नों का दोहराव ना हो और छोटे बच्चों से आप फोन ना कराएं। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से हेमराज बसवाल जी का खूब खूब स्वागत है। और जब तक श्रोताओं के फोन आते हैं, हम जो सामान्य से हमारे प्रश्न होते हैं वो हमारे विशेषज्ञ से हम पूछ लेते हैं।
7: तो साहब बताओ, अभी जो को राजस्थान में रबी की बोई जावाड़ी जो को प्रमुख जो को फसल है

0: तिलहनी फसल वह कौन सी है और बीज की बुआई कब तक करनी चाहिए?
1: किसान भाइयों नमस्कार। अभी रबी सीजन चल रहा है और रबी में जो मुख्य फसल है तिलहनी और राजस्थान में सरसों है। सरसों अभी बुआई का समय चालू है, आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और नमी, जहाँ नमी संरक्षित है तो अगेती बुआई हो जाती है, और जहाँ नमी कम है तो भाई किसान भाई पलेवा करके प्री सोइंग इरिगेशन करके बुआई कर सकते।
2: जी, बात आगे भी करेंगे, एक श्रोता जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
3: हेलो किसान।
4: हाँ जी, हमारे यहाँ क्या है कि 10-15 पेड़ बो रखे हैं। बैरोट से बोल रहा हूँ,
2: जी,
4: सुनील।
2: नाम भी बताएं आपका।
4: सुनील,
2: जी, किस चीज के पेड़ बो रखे हैं?
4: 5 कटहल के थे और 5 नींबू लिए थे। हाँ,
0: नींबू और किसके?
1: कटहल।
0: कटहल,
1: समस्या क्या
4: तो उन हाँ उसमें क्या है, नीचे लच्छी नहीं होती है, सफेद लच्छी लाल मुंह की है, वो सब पेड़ सूखे जा रहे हैं।
1: देखो, आप बता रहे हैं कि आपके कटहल और नींबू के पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें लाल मुंह की लट जो लग रही है वो जड़ों में लग रही है पत्तियों पे? हाँ,
4: जड़ों में है, जड़ों में है,
1: जड़ों में।
4: जड़ों में।
1: तो वो लाल मुंह काले मुंह की वो सफेद लट लग रही, जो पीछे से सफेद होती है, गोजा लट कहते हैं उसको, उसको सफेद लट कहते हैं, व्हाइट ग्रब कहते हैं। अधिकतर बरसात की सीजन में लगती है। तो उसके लिए एक तो ये है कि उसमें अब तो वो बुआई का समय जो समय होता है खरीफ में, तो उस टाइम तो ये आती है, पनपती है। लेकिन अब तो एक तरह से आपको रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई भी रासायनिक दवा है, जैसे एमेडा क्लोप्रिड और एक क्विनालफास दवा आती है, इनका आप मिश्रण दोनों का मिला के आप पौधे की जड़ में डालें, गोड़ डालें। कम से कम 1 लीटर पानी में आप डालें 2 से 3 ml तो एमेडा क्लोप्रिड डालें और 5 ml क्विनालफोस डाल के और पौधों की जड़ों में डालें, उसमें थाले में डालें, ताकि वो नीचे तक जाए और वो जड़ को, वो जड़ में जो भी लट है वो खत्म हो जाए या वो रिपेलेंट हो जाए, वहां से भग जाए।
4: पिछली बार भी बताई थी और एल्ड्रिंग भी बताई थी, सब कुछ डाल दिया, वो जा रही नहीं है।
1: अब तो ऐसा है, देखो इसमें आप जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी है उसको एक बार नीचे तक हटाएं, तो उसमें यदि कोई गोजा लट निकलती है तो उसको खत्म करें, उसके बाद नई मिट्टी उसमें शिफ्ट करें। यदि उसके अंडे हैं या कोई उसके लार्वा है तो वो भी निकल जाए, यदि वो रहेंगे तो वापिस पनप जाएंगे, तो नई मिट्टी शिफ्ट कर दे तो फिर उसके साथ दवाई डालें तो वो नहीं होगी बाद में। और पेड़ के उसके आपके पौधों के आसपास ज्यादा यदि पेड़ पौधे हैं बड़े तो उनको भी कटाई छटाई करें, ताकि वो लट का जो है उसका भ्रंग है, वयस्क भ्रंग वहां नहीं बैठे और वो अंडे नहीं दे।
0: हेलो हेलो।
5: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो किसान, किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत है।
5: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, क्या जानकारी चाह रहे हो?
5: जानकारी तो सर, हमारे गाजर बोई हुई है, वो उसकी वो जड़ काली पड़ रही है नीचे से।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: जोधपुर से।
1: अच्छा किसान भाई, जैसे आप बता रहे हो कि गाजर बोई है और
5: हाँ,
1: उसकी जड़ काली पड़ रही है अभी,
5: जड़
1: तो
5: काली
1: हाँ?
5: मतलब जड़ काली पड़ के वो ऊपर से बढ़ रही है।
1: या तो अभी क्या है कि अभी बोई, कितने दिन हो गए उसको बोए?
5: लगभग हो गए 10 दिन।
1: 10 दिन। तो अभी क्या है कि जितने भी जड़ जनित रोग वो जमीन में होते हैं, ये फफूंद जनित रोग होते हैं, तो जड़ पे लगते हैं बुआई के आसपास, जो एक नर्सरी में लगते हैं राइजोटिनिया, फाइटोप्थोरा और पीथियम नामक कवक लगते हैं। तो वो जो भी फसल बोते हैं उसकी जड़ को जमीन के पास से गड़ा देते हैं और नीचे जड़ गड़ा देते हैं। इसमें आप कोई भी अंतर प्रवाही फफूंद नाशी दवा डाले, इसमें एक मेटालाक्साइल दवा आती है, पाउडर आता है 35% WP, वो घोल के डाले तो वो जो भी जड़ गल रही है ना वो खत्म हो जाएगी आपकी, वो जड़ गलन रोग वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि नर्सरी में आता है, नर्सरी जो भी कोई अपन बोते हैं या ज्यादा बीज बोते हैं नर्सरी टाइप, तो उसमें ये जड़ गलन रोग आ जाता है। ये दवाई डाले और फिर थोड़ी सिंचाई कर दे तो ये जड़ गलन नहीं लगेगा आप।
2: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
6: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्कार। हेलो किसान, नाम बताएं
6: जी
2: अपना।
6: मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मंडावर तहसील है मेरी, कालू कारकल जिला है।
2: जी, क्या पूछना चाहते हैं आज?
6: मैं ये पूछना चाहता हूँ सरसों में डीएपी कितना होना चाहिए सर?
1: हाँ महेंद्र सिंह जी, सरसों, सरसों एक तिलहनी फसल है, तो इसमें आप ज्यादा डीएपी नहीं लेके रहे, सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग करें बुआई में तो बहुत अच्छा रहेगा। अपन किसान भाई ज्यादातर डीएपी की तरफ जाते, सरसों को गंधक की जरूरत होती है उसके दाने और पौधा बढ़ने के लिए, तो आप सुपर फास्फेट यूरिया का प्रयोग करें। और यदि आप डीएपी बोना चाहते हैं तो उसमें आप ये बीघा, जैसे आपके कच्ची बीघा लो या पक्की बीघा, पक्की बीघा में आप कम से कम आप ले लो 20 से 30 किलो डीएपी पर पक्की बीघा आप ले लो, और सुपर फास्फेट यूरिया का करो तो आप उसमें कम से कम आप एक हेक्टर में 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता और 50 किलो आप लो यूरिया, दोनों को मिला के और बुआई करो और उसके बाद पटवास लगा के और फिर सरसों की बुआई करो तो सरसों जोरदार होगी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा में सल्फर मिलेगा और फास्फोरस दोनों मिलेंगे।
0: हेलो हेलो किसान।
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप?
3: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर झुंझुनू से जी।
0: जी बताए जी।
3: मेरे जी चार पेड़ है जी लेस लेके
1: जी।
3: हेलो
1: हाँ हाँ बताइए।
3: हाँ तो उसमें फिर वो 3 साल की हो गई जी, वो उसको फड़ के आने की संभावना, मतलब कीड़े मकोड़े ज्यादा चिड़ रहे उस पर।
1: राजेंद्र जी आप बता रहे की लेस वाले पौधे है 3 साल के हो गए, एक तो इसमें जैसे फल नहीं आने का तो कई कारण होते हैं, एक तो उसमें वो वैरायटी कैसी है आपने सही किस्म चुनी है, दूसरा होता है उसमें जो पोषक तत्व जिसमें आप देसी भी ले सकते हैं उर्वरक भी लेते हो तो वो प्रॉपर दे रहे कि नहीं दे रहे, एक ये भी कारण।
3: खाद खुद सब कुछ ठीक है, खाद पानी सब कुछ दे रहे हैं
1: ठीक है। अब इसके बाद उसमें हार्मोनल इम्बेलेंस, हार्मोन का असंतुलन भी हो जाता तो फल समय पर नहीं आ पाते, तो
3: हार्मोन
1: इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जैसे अपने हार्मोन होते हैं ना अपने शरीर में, जैसे डायबिटीज का इंसुलिन होता इस तरह, उनमें भी हार्मोन की कमी आ जाती है, तो इंडोल एसिटिक एसिड होती है या नेप्थलिंग एसिटिक एसिड होता हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन आता, इनका आप 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो उसमें संतुलन हो जाएगा, फल समय पर आने लग जाएंगे। और कीड़े मकोड़े की जहां तक बात कर रहे हो तो उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े से, या तो बड़े पौधे हो गए तो इसमें क्यूनालफास दवा आती है एक पानी के रूप में तरल, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर दें और वो कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाएंगे, कोई लट भी होगी खत्म हो जाएगी।
3: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। तो सर आप बात कर रहे थे कि अपने जो सरसों की बुआई के बारे में, उसके आगे पूछना चाहेंगे कि इसमें जो बीज दर है वो कितनी रखनी चाहिए?
1: देखो
2: एक बार फोन आया, फोन बात कर लेते हैं। हेलो किसान।
7: हाँ नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
7: सर मैं बिहार जिले से बोल रहा हूँ, मंगल क्षेत्र रोशन खान
2: जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
7: सर से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट बुआई के अंदर यूरिया कितना डालने मेरे जमीन के अंदर, क्या दीमक का प्रकोप कुछ ज्यादा है?
1: किस चीज का ज्यादा है?
2: दीमक।
1: दीमक, दीमक। आप फर्स्ट बुआई में यूरिया की जरूरत नहीं है, मतलब बुआई के समय तो आप बेसल जो ऊर के बोना पड़ता है बुआई से पहले, कोई सा भी आप फास्फेटिक फर्टिलाइजर और मिक्सअप जो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर या एनपीके तीनों का वो आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद आप करो दीमक की समस्या, दीमक के लिए आप बुआई के समय बीज उपचारित करके बोए, उसमें फिप्रोनिल 5% सोल्यूबल कंसंट्रेट आता उसमें मिला के, हर फसल का अलग अलग होता, सरसों में कम होता, चने में 5 ml प्रति किलो के हिसाब से डालते हैं, गेहूं में भी लगभग इतना ही 5 ml प्रति किलो के हिसाब से बीज में मिला के वो बुआई करते हैं
7: जी।
1: और सिंचाई के बाद, सिंचाई के साथ आप भी दे सकते हैं फिप्रोनिल 5% इस दवा को।
7: ठीक सर, धन्यवाद।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान।
8: हेलो
2: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो
8: हेलो
2: जी, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
8: एम आर चौधरी जयपुर सिंह बोल रहा हूँ जी मैं।
2: जी
8: ये पूछ रहे था सर, मैंने यहाँ प्लाट में 400 गज़ प्लाट है, उसमें सब्जियां बोई
1: जी,
8: पूरे में दिमक लग गई और बीज भी मैंने जो आपका जहाँ जो ये दुकानें आपकी है वहां से ली है।
1: देखो
8: और
1: बताइए,
8: और दो घिया के पेड़ है मेरे हिसाब से 100 घर सब्जी खा सकते, इतना फैला हुआ उसमें एक भी नहीं लगी पिछले 4 महीने।
1: बिल्कुल आप कर रहे हो, बीज अच्छी कंपनियों के लिए अच्छी दुकानों से लिए, लेकिन बीज कारण नहीं हो सकता, वो दीमक तो एक कीट है, चाहे अच्छा लो चाहे देसी लो कैसा भी लो, लेकिन उसका उपचार करना बहुत जरूरी होता। यदि दीमक ज्यादा है ना तो उसमें गर्मी में एक तो सबसे पहले हर साल गर्मी में एक अच्छी तरह जुताई करके 400 गज के जो प्लाट बता रहे हो उसमें बढ़िया गर्मी में जो चटक गर्मी होती है वहां जुताई करके छोड़ो 15-20 दिन महीना।
8: अच्छा,
1: तो इसके जो भी नीचे टर्माइट ईडीएम नीचे वो घर वर बन रहे वो सब खत्म हो जाए, इनके अंडे जो भी है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप बता रहे हो कि वो एक घिया का पौधा लग नहीं रहा, तो वो घिया में क्या है कि कई बार हार्मोन का बैलेंस हो जाता है, बहुत बढ़वार तो खूब होती है, बेलड़ी खूब बढ़ जाती है।
8: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो उसमें आप कोई भी हार्मोन का, एक तो क्या है कि उसमें नत्रजन उर्वरक जैसे यूरिया वगैरह मत दो, इतना बढ़वार कम हो, अपन को फल ज्यादा लेने, ज्यादा बढ़वार नहीं लेनी। तो उसमें कोई भी हार्मोन जो भी ऑक्सीजन हार्मोन है आता बाजार में मिलता, उसका 5 ml 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे, उसमें नेप्थलिनिक एसिड आता, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आता, वो ऑक्सीजन हार्मोन के नाम से मिलता, एक इसमें फिप्रो एक अलग हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड जो फलों को बढ़ाने में काम करता, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं इनके अलावा।
8: अच्छा,
1: तो उसमें आपके फल आ जाएंगे बेलड़ी।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हेमराज बसवाल उपनिदेशक कृषि कृषि आयुक्तालय जयपुर आज हमारे साथ हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे पर इस छोटे से अंतराल के बाद।
9: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
10: इतना बोल रहे
9: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
10: मतलब
9: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
10: पर हम तो सब यही डाले हैं।
9: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
10: सच
9: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
10: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
11: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
12: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
13: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
12: वो कैसे?
13: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
12: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
0: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी में दोबारा स्वागत, और आपने साथ आज विशेषज्ञ जुड़े रहे हैं हेमराज बसवाल उपनिदेशक कृषि कृषि आयुक्तालय जयपुर। हेलो,
14: राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं?
14: साधुल से रूम बोलूं जी, राम कुमार युवाड़।
1: हाँ बोलिए राम कुमार जी, क्या समस्या?
14: समस्या थी, मैं इस आंवले की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ सर।
1: देखो आंवला एक अपने फलदार फसल है और इसको दो सीजन में आप बो सकते हैं, एक तो जुलाई अगस्त में और एक फरवरी मार्च में। यदि आपकी सिंचाई की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में कर सकते हैं। इसके लिए पहले लेआउट तैयार करें और खेत को समतल करके लेआउट बनाए और गर्मी में उसके लेआउट करके गड्ढे खोदें, उसके बाद उसका मिट्टी कम से कम 15-20 दिन बाहर रहे, उसमें फिर गड्ढों को बिल्कुल एक एक नियत विधि है उसके अनुसार गड्ढों को खाद और कीटनाशक और मिट्टी मिला के और ये फपूनाशी दवा मिला के उस गड्ढों को भरे, उसमें बरसात के सीजन में जो आप जुलाई अगस्त में आप पौधे लगाएं। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं।
14: पौधे की दूरी कितनी रखनी है?
1: दूरी अलग अलग है, जैसे आप उसमें खेती करना चाहते हैं तो उसमें दूरी ज्यादा रखनी, 6x6 मीटर में रखते हैं। और
14: एक बीघे में कितने पौधे लग सकते हैं सर?
1: अब इसमें आप बीघा, अब हेक्टर का आप कर दो, जिसमें कैलकुलेट कर लेना अलग अलग। यदि आप 5x5 मीटर लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसमें भाग दे लिए, 10,000 में एक हेक्टर का पौधा आ जाएगा। आप उसकी डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी कम रखेंगे, केवल बगीचा ही रखेंगे तो आप 4 मीटर भी रख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वेराइटी आ गई आजकल, हाथी जूल है, फ्रांसिस आ गई और चकिया है, तो हर एक फसल, हर एक पौधे की हर एक किस्म का अलग गर्त होता, उसकी पेरीफेरी ज्यादा होती।
14: इसकी पूरी जानकारी सर कहाँ से मिलेगी मुझे?
1: आप हमारे आपके गंगानगर में उपनिदेशक उद्यान कार्यालय है, वहाँ हमारे उपनिदेशक महोदय बैठते हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ बिल्कुल आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बसरते वहाँ कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक भी आपके क्षेत्र में रहते हैं वो भी, लेकिन आप कार्यालय जाए, वहाँ से पूरी जानकारी आपको इस आंवले के बारे में मिल जाएगी।
14: धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद फोन करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बसवाल साहब, हम सरसों की फसल की बात ही कर रहे थे
1: जी,
2: बताएं।
0: एक तो उसके अपने बीज दर के बारे में आप बताइए और बीज को उपचारित करने के बारे में बताइए।
1: देखो सरसों एक तिलहनी, एक मुख्य रबी की तिलहनी फसल है, इसमें लगभग किसान भाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बोते हैं, और कुछ जहाँ सिंचाई से बोते तो आखिरी अक्टूबर तक भी वो बुआई कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की जरूरत पड़ती है, तो ये वैसे इसमें बीज में सल्फर होता है तो ज़्यादा कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें फफूंद जरूर लगती है, इसमें सफ़ेद रोड़ी बाद में लग जाती है और फिर नीचे अर्ली स्टेज में इसमें जड़ से जनित रोग लग जाता, इसलिए इस बीज को अपन मैंकोजेब दवा आती है 75% WP, इससे 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए तो उसमें फिर वो फफूंद जनित रोग अपने जमीन में नहीं लगते पौधे।
2: हेलो किसान, हेलो हेलो
15: हेलो, खेती बाड़ी में नमस्कार
2: जी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, नाम बताएं आप अपना, कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
15: प्रेमदास बोल रहा हूँ लाडलू से, तहसील लाडलू, जिला लीलवाला कुतामन से।
2: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
15: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मिर्ची है, मिर्ची छोटी छोटी लग रही है और उनके जो पत्ते है वो सिकुड़ रहे हैं।
1: प्रेमदास जी, जो मिर्ची अभी पौध लग गया, कितने दिन की हो गई?
15: पौध नहीं, वो बड़ी है।
1: अच्छा बड़ी है, उसमें इसमें माथाबंदी रोग करते हैं, इसको प्रण कुंचन करते हैं, इसमें TMV 1 नंबर का वायरस लग जाता है तो पत्तियों को सिकुड़ा देता, पत्तियों को मोड़ देता, माथाबंदी रोग करते हैं। अब इसमें यही है, यदि पुरानी मिर्ची है तो ज्यादा गुथरा, यदि माथा बंद ज्यादा ही होता उनकी कटिंग करें ज्यादा हो रहा तो, और यदि कम मुड़ान हो रहा तो उसमें एमेडा क्लोप्रिड दवा आती 17.5 SL, वो आप 10 ml 15 लीटर पानी में मिला के या 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, या थाया मेथोक्जाम 25% वाटर सोल्यूबल ग्रेनुल आते हैं वो आप 5 से 10 ग्राम के लगभग एक दानेदार दवा आती है वो आप 10 ग्राम उसमें डालें 15 लीटर पानी में, वो घोल के और उसमें थोड़ा सा चिपकनी वाली दवा डाल के उस पर छिड़काव करें, और 15 दिन में आप छिड़काव करें तो माथाबंदी आपकी काफी हद तक सुधार आ जाएगा, और ज्यादा गुथरा तो उनको काट के हटाए क्योंकि वो फिर वो सुधर नहीं सकता।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो
16: नमस्कार साहब।
0: हेलो किसान, नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या नाम है सर आपका?
16: मेरा नाम ताज मोहम्मद, मैं जोधपुर जिला इस्लाम नगर बोल रहा हूँ साहब।
0: क्या जानकारी चाहते हैं?
16: जानकारी आई है कि हमारे तो सब पहले आप जो जवाब दे और जो मारे फड़ उतर में आपने बहुत बहुत धन्यवाद दे, फोन इन कार्यक्रम शुरू कियो जो आपने धन्यवाद देने वास्ते साहब कियो। मैं
1: कोई समस्या हो ताज मोहम्मद जी?
16: समस्या तो हाल बिना तो साहब कहीं
1: को नहीं, काल बखत है, रब का रब का ये बना रहे रहमो करम।
2: हेलो किसान।
17: हाँ नमस्कार साहब।
2: नमस्कार, हेलो किसान, किसान वाणी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
17: मैं तो सर कर रहा हूं चांद समा जिला फरोदी से।
2: जी क्या पूछना चाहते हैं आज?
17: सर ये पूछना चाहते हैं ये जीरे के समय दसवें महीने में बीजे या ग्यारह महीने में?
1: देखो अभी अब

0: अच्छा लगा, मैं कहूँ दोबारा शुरू कर दिया आपने।
1: बिल्कुल
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका फोन करने के लिए। किसानों के लिए होना चाहिए ये, मतलब
1: बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए।
3: रबी फसल में अभी अपने जो दलहनी फसलें बुआई करें तो उसमें अपने जिप्सम की जो मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए?
1: किसान भाइयों, जैसे तिलहनी और दलहनी फसलों में जिप्सम बहुत अच्छा काम करता है। ये इसमें एक तो गंधक होता है, एक कैल्शियम होता है, तो ये तिलहनी फसलों में तो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दलहनी फसलों में ये दाने को मोटा और सुडोल चमकदार बनाता है इसमें, तो इसलिए 250 किलो के आसपास आप प्रति हेक्टर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको बुआई से पहले ही खेत में डालें और बढ़िया उसमें हल से जोत के और मिट्टी को समतल बना दें।
3: हेलो किसान, हेलो
2: हेलो
4: हेलो,
3: किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या जानकारी चाहते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी हम फरोदी जिले से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ।
3: जी मोहम्मद जी, क्या जानकारी चाहते हैं?
4: एक मेरे अभी अभी मैंने टेली का पौधा लगाया था।
3: अच्छा, केजरी का तो, या शीशम, क्या बोल रहे हैं?
4: टेली, टेली जो साया के वास्ते होती है ना।
3: हाँ,
4: तो उसमें क्या कि पत्ते पीले पड़ते हैं और बढ़ रहे हैं,
1: तो
4: और पानी भी
1: आप कह रहे हो कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसके?
4: हाँ, तो इसमें कई जड़
1: रहे हैं, कई कारण होते हैं। एक तो इसमें होता है कि पानी की मात्रा समय पे नहीं होती है। पानी तो बराबर दे रहे हैं आप?
4: ना ना, पानी तो बराबर दे रहे हैं,
1: ठीक है। दूसरा आता है इसमें पोषक तत्वों की कमी, मतलब उसमें खाद वाद दिया कि नहीं, पुराना गोबर का खाद और उर्वरक दिए?
4: अच्छा, पुराना खाद देना पड़ेगा
1: वो? हाँ, वो पुराना सड़ा खाद,
4: जो बकरी की खाद दे या
1: कोई सा भी दो, पुरानी होनी चाहिए। बकरी की खाद दो तो कूट के दो।
4: अच्छा,
1: और उसमें थोड़ा सा डीएपी और या एनपीके डालो। कितने दिन का पौधा?
4: वो पौधा तो अभी बारिश के मौसम में लिया था।
1: हाँ, तो छोटा ही पौधा अभी, तो उसमें आप ये भी थोड़ा सा देशी खाद भी दे उसके साथ, कोई 100 ग्राम आप डीएपी या एनपीके डाले, उसको अच्छी तरह उथावड़े में डाल के मिलाए और पानी दे दे समय समय पे उसको।
4: और एक यहाँ पर जो दीमक बहुत ज्यादा है, क्या है ये दीमक?
1: दीमक तो क्या है कि एक सर्वभक्षी कीट है जो सब जगह हो जाता, नमी कम होते ही ऊपर आ जाता, तो इसमें दीमक के लिए तो अभी तो उसको दीमक को मारना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको भगा सकते हैं अपन दवाई से। तो एक फिप्रोनिल दवा थी, उसको आप पानी के साथ घोल के दे सकते हैं। फिप्रोनिल 5% की आती है, विलायक आता, तो उसको आप 2 से 3 ml एक लीटर पानी में मिला के आप वो सिंचाई कर सकते हैं, उससे दीमक भग जाएगी आपकी।
3: किसानों ने कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राजू जी
3: जी,
2: हेलो किसान कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हेमराज बसवाल, उपनिदेशक कृषि, कृषि आयुक्तालय जयपुर। आज आप स्टूडियो में आए, बहुत बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज हेलो किसान कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो दिराएं इजाजत दें आशा को
3: और राजू को,
2: चलें और करें
3: राम राम।
1: नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: आकाशवाणी जयपुर से अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं शाम के

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी।
2: जी।
3: वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: जी, तो श्रोताओं इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी।
3: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
3: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
2: जी, तो अजीत जी अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट, विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
3: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
2: जी,
3: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
2: जी,
3: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
2: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
2: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
3: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
2: और इसे प्रदान कौन करता है?
3: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
2: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
3: जय हिंद। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
4: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
5: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
4: भालू ने कहा,
6: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
4: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
6: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
4: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
6: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
4: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं

0: ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तो बर्बाद हो

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी।
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: आणि चलना जल्दी करना
1: जल्दी तय बड़ा
2: करके लानी है। अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
4: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपनी कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
4: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
4: और क्या
3: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
4: हाँ?
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से?
3: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: अब, आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है।
3: हाँ।
2: गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता।
3: हाँ, हाँ।
2: इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
4: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो चलो
4: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
5: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: अर्षद,
3: चेतना,
2: कुसुमलता,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1389वां भाग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनेंगे।

0: दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बनाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त अहमद अली लेकर आपके लिए सजीला सुरीला और आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जयकिशन।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जयकिशन?
1: पूरा बगानदास।
0: क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई।
0: कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं?
1: क्लास में।
0: तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आप सुना देना कोई अच्छा सा।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपके लिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: तरुण सिंह बोल रहा हूँ, पाल से पलनपुर
0: तो क्या करते हैं आप?
1: हूँ सर।
0: प्लम्बर हो? अच्छा, तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना है एक कच्चे धागे का,
0: जी
1: दिल परदेसी हो गया, लता मंगेशकर कुमार सानू द्वारा।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म कच्चे धागे का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हंसराज, मैं क्या
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: आप तो
0: हंसराज?
1: पूरा भगवान से
0: क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं, गाड़ी चलाते,
0: पढ़ाई नहीं करते?
1: पढ़ाई नहीं करते, 12वीं तक पढ़ाऊंगा।
0: अच्छा, तो आज आपने फोन किया है। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सात समुंदर पार किया तेरे पीछे पीछे।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइल
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मैं इकबाल फैजल बोल रहा हूँ, ठाकुर अजमेर के सुन लो। सर,
0: जी, आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जवाब हम देंगे,
0: जी
1: लेकिन सर आप फिर दीजिए।
0: जी
1: गाने के बोल रहे हैं, तारीफ करना उसने की मदों की है। गाने के बोल
0: बड़ा अच्छा गाना है। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। तो सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर आपको ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: फरमाइए।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: पूनम चंद बोलूँ, गाँव बोजशरी, जिला नागौर, तहसील देश है।
0: क्या काम करते हैं आप?
1: अभी तो लावनी के काम करते हैं सर, मूंग पड़ा हुआ है, बाजरी खड़ा रखा है।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो अभी फसल कैसी हुई है आपकी?
1: फसल सर बाजरी कम थी और मूंग अच्छे भरे थे और मूंग मोड़े हो गए, तो बरसात नहीं हुई सर।
0: तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तो पहले मेरे एक दोस्त का नाम लेना चाहूँ।
0: हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: तो एक है भवानी सोनी मैन सर हूँ,
0: जी
1: एक है भीष्म राम,
0: अच्छा
1: एक मेरी भतीजी तमन्ना और एक के भारतीय किरण वान, सब ने सुना वो जिगर फिल्म, इनकी मुझे बड़ा तो देखा होगा मुझे।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं जिगर फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: नागौर से नीमिषंद कुमार आपका नीम सोता।
0: जी? नमीचंद जी, क्या हाल चाल
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: आपके?
1: हाल चाल बहुत जोरदार है। नवरात्र की आपको शुभकामनाएं।
0: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म पाकिजा चलते चलते कहीं मिल, लता मंगेशकर का गाना है,
0: जी
1: बहुत अच्छा गाना है। हम हमारे बहुत साथी भी सुनना चाहते हैं,
0: जी जी
1: और पंकज पवार, निकिता, वीणा और विजय विजय।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: महेंद्र देपन बोल रहा हूँ, गांव रोन, जिला नागौर, राजस्थान से। हाँ,
0: रूण से बोल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं?
1: तो खेती करते हैं बस। अभी
0: खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो और क्या चल रहा है अभी?
1: बस बाजरे की कटाई हुई
0: जी
1: और अभी उसको निकाल के घर में रखा है।
0: जी तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तीन
0: उनका
1: चुराई मेरी किस्म है।
0: तो आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद पर ये गाना।

तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए आप हमें फ़ोन करें प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। तो दीजिए अगले कार्यक्रम तक अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत। नमस्कार।

हेलो फरमाइश, अभी आप हमारे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेट थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशो भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
1: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाश

0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
2: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए अब सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की गाई चंद गजलें। पहले सुनिए कार्यक्रम की ये पहली गजल।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंद गजलें। फनकार है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की इन्हीं की गाई अगली गजल।

0: चंद गजलें अभी आप रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की गाई सुन रहे थे। कार्यक्रम था सुगम संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:25 हुए हैं। अब आप एक विशेष कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वी

0: चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
1: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
0: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए। डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
2: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
0: जी
2: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा।
0: बिल्कुल,
2: 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट will and have changed the ease of living for our families.
0: Okay.
2: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते
0: जी। बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, जो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रह के आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक होलिस्टिक
1: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को

0: आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है। वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी, क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक,
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तरह का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है, और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं उनकी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं। और उनको नहीं

0: दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है किरदार या के लिए और दोस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें में पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा। राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था। वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी निहार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल,
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा। इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उस
0: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
1: उसी दिन बदल गई।
0: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका, आंकड़ा मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़ अमेरिका 33 ब्राजील 21 और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड्स, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की

0: अगेन बच्चों पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। 4 लाख डेथ्स जो हैं वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो एक सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूँगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहां बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
1: जी।
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हो तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
1: बिल्कुल
2: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती,
1: बिल्कुल
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं, उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो एश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों,
1: दो अलग अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब, और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी आपको अगर इकोनॉमिक्स

0: समझना हो तो किसी की रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, आप पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा। महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा वगैरह वगैरह, उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है। तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
1: जनता की कैटेगरी में जी।
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रासरूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टीमेट या 2014 के एस्टीमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टीमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
2: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
2: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को
1: जी।
2: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से

0: लोगों की एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आज कल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
1: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5,00,000 का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
2: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
2: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6,000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है, वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं या पिछली बार आपने देखा, मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ पे जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
2: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
1: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है, तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
2: जी।
1: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
2: जी।
1: और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल।
1: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
2: जी।
1: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
2: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: विशेष कार्यक्रम में अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी नागौर है।

एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चेतनी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।